0: पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: तू राधा में कान्हा
1: ना, ना, ना, ना।
0: क्या?
1: बिजली और बादल
0: तुम दोनों हो पागल
1: है खूब ये जोड़ी
0: बस देर है थोड़ी
1: तुम जीवन साथी
2: हम सब बाराती
1: रंगों की डोली
0: ले आई होली
1: भर लो पिचकारी

0: ना भूला रास्ता,
1: रस्ते पे आ जाओ।
0: मैं थाम लूं भैया,
1: मत छेड़ो सैया,
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो,
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा,
1: चल हट जा झूठा,
0: तो नाच में गाऊं,
1: तो बैठ में जाऊं,
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना,
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले,
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला,
0: क्या लाल गुलाबी,
1: तू बोलो भाई।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

कलियां तक गाँवे मैं बहुत वेखे बादशाह इको सी लखा च माणक कलियां दा मां हुंदी है मां छेती कर सरवण पुत्रा गाँवदा कोना कोना अज भी शहरां गलियां दा माण माणक दा बनाया जिहड़ा सच्चे रब ने ना ही योध्यां दा ना ही वलियां दा लोकी रहबरां दी रावां विच फुल सुट दे मान माणक नूं मिलिया हत्थां दियां तलियां दा सस्सी सोहणी महिवाल ते हीर रांझा किस्सा सच दा गाया रूहां भलियां दा मैनू माणक दी गोदी च बैठण दा जिहड़ा माण मिलिया मैं दान कीता होना जरूर सोने दियां फलियां दा किसे कलियां तां गाउंदे बहुत वेखे बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। उस्ताद श्री कुलदीप माणक जी नूं समर्पित चंद शब्द।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स। कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230303।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: ਸਕੀਨ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਜੀ, ਢੋਲ ਤੇ ਸਮੀ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੀਆਂ ਦੀ ਢੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਢੋਲ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੀ ਰਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸਰਾਇਆ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ?

0: और नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। इसके अलावा 100.6 FM पर भी वेस्ट यॉर्कशायर में आप सुन सकते हैं और अगर आप DAB पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीटली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप डाबी में भी सुन पाएंगे। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों साथियों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। अब से लेकर 1 बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। 1 और 2 के दरमियान यानी कि आखिरी आवर जो होगा उसमें लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बता दिया और अब वक्त जो है हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे जो तकरीबन 1 मिनट और 24 सेकंड्स की है। उसके बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे बल्कि एक कवाली नुमा गीत होगा आप सभी दोस्तों के नाम। तो ये सिलसिला चलेगा, सबसे पहले कमर्शियल होगी, कमर्शियल के बाद छोटी सी इवेंट्स डायरी होगी और फिर आप गीत सुन सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद जैसा कि मैंने कहा गीत, गीत के बाद इवेंट्स डायरी और फिर गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

अभी आपने अदनान समी को सुना जनाब, फिल्म का नाम था जिसे ली हुई यह कवाली थी, बजरंगी भाईजान फिल्म से ली हुई यह कवाली आप दोस्तों के लिए पेश की। और चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, आपके दोस्तों के नाम ज़रूर गीत करूंगा। और रीटा बेटिया, आप अमेरिका में सुन रही हैं और आपको ये कवाली बहुत अच्छी लगती है, तो आपके नाम की ये कवाली, शुक्रिया पसंद करने का और प्रोग्राम को सुनने का। वहाँ अभी काफ़ी टाइम है आपका और आप जाग गई, प्रोग्राम सुन रही हैं तो अच्छा लगा। और अब जो आने वाला गीत है, ये गीत है मेरी जन्म से आप तमाम सुनने वालों के नाम। तो वाजिद भाई एड्रेसफील्ड से आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका, आपके नाम भी करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। और हमें फोन किया जनाब अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वालों ने, और कहा सब सुनने वालों को, सब दोस्तों को सलाम, और एक सदाबहार पुराना गीत सुनना चाहते हैं जनाब, और ज़रूर पुराना गीत लगाएंगे। उसके बाद नदीम मंसूर साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, और आपने गीत की फरमाइश की, माजी चाहते हैं गाना वो है जिसकी आपने फरमाइश की, लेकिन रफ़ी साहब का गाना वो यहाँ है नहीं है, वो बंकिम पाठक जो है उन्होंने गाया है, तो जनाब वो गीत मैं आपके नाम करता हूँ, आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम करता हूँ। मोहम्मद बशारत भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करता हूँ जनाब इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और चौधरी मुजफ्फर साहब, हीरा साहब, ताजुल्फी साहब और सफ़ीउल्ला भाई, चौधरी मनीष साहब चक्की वाले, महबूब लाई, आप सभी दोस्तों के नाम, और अमजद हकीम भट्टी साहब आपके नाम भी। तो चलते हैं सुन, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 11। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद नदीम मंसूर साहब की पसंद पे गीत, माजी चाहते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत गाया गया है, लेकिन वो यहाँ सिस्टम में है नहीं, तो ये बंकिम पाठक का है उसकी आवाज़ में, तो वो लगा देते हैं नदीम मंसूर साहब आपकी पसंद पे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: 24 hours a day. The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99. Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

बंकिम पाठक की आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। यूं तो ये रफी साहब का गाया हुआ गीत है, इन्होंने गुनगुनाया तो जनाब नदीम मंसूर साहब आपने फरमाइश की थी, आपके नाम आपकी पसंद का गीत किया। और दोस्तों आप चलते हैं अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत है और आप प्यारे दोस्तों की नजर करना चाहूँगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। दोस्तों अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, या फिर जनाब आप किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा। तो चलते हैं एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं आप सभी दोस्तों के नाम।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और यही आवर होगा जिसमें आप के लिए डेडिकेशन होगी जनाब। और क्योंकि प्रोग्राम के जब तीसरे और आखिरी आवर में आएंगे तो फिर लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो जनाब हमें अब फ़ोन किया हीरा खान साहब आपने, शुक्रिया फ़ोन करने का। मस्ती भरा गीत है आपकी जानिब से, आपके तमाम दोस्तों के नाम होगा। और उसके बाद अमजद भाई आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और ये मस्ती भरा गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आपके लिए पेश कर रहा हूँ। उम्मीद रखूँगा अमजद भाई आप ज़रूर पसंद करेंगे, शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत का। उसके बाद इसी गीत को मलिक इम्तियाज़ साहब आपके नाम करेंगे, आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे जिनमें इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इफराज, तो आप दोस्तों के नाम भी। और इस वक्त ये मस्ती भरा गीत सुन रही है नजमा साहबा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा, आपके नाम भी करेंगे। और थोड़ी देर के बाद इकरा जी आपकी जानिब से भी आपकी सहेलियों के नाम ज़रूर गीत करूंगा। तो ये मस्ती भरा गीत आप सब सुनने वालों के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी और साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये हिट ऑफ द आवर मस्ती भरा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही मस्ती भरा की सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी कमर्शियल का टाइम भी हो गया है। तो चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं टाइम क्या हुआ है, हमारे स्टूडियो की घड़ियां क्या बता रही हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:15, यानी कि 15 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं दोस्तों,

0: सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा सभी सुनने वालों के नाम।
1: 24 hours a day, जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230300।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने अच्छा लगा होगा आप दोस्तों को। और अब जो गीत आने वाला है बड़ी प्यारी शायरी है, बड़ी धीमी सी धुन जो बड़ी मन को भाए जनाब, और उधर नारायण की प्यारी सी आवाज़ दोस्तों, क्या गीत है, बड़ी शायरी वाला है। और जब महबूब लाई साहब ने मुझे मिस कॉल दी तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़े पाए के शायर हैं, शायरी करते हैं और गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो कोई ऐसा गीत उनके लिए चुना जाए जो कम से कम उनको तो हर हाल में अच्छा लगे, बाकी दोस्तों को अच्छा लगेगा ही। तो आप महबूब लाई साहब, मुझे कभी उम्मीद है कि ये गीत आप ज़रूर पसंद करेंगे, उधर नारायण की आवाज़ में है और बड़ी प्यारी धुन है और शायरी का तो जनाब जवाब ही नहीं, लाजवाब शायरी है, ज़रूर आप पसंद करेंगे, स्पेशली आपके लिए चुना है मैंने जनाब। और महबूब लाई साहब, आपके बाद हीरा खान साहब ने फ़ोन किया, शुक्रिया, गप हुई लेकिन गप अधूरी रह गई क्योंकि गाना ख़त्म हो गया था, और जब मेरी निगाह पड़ी तो देखा 6-7 सेकंड रह गए, गाना ख़त्म होने लगा है, तो जल्दी में मैंने कहा हीरा साहब गाना ख़त्म, तो जनाब उतनी जल्दी उन्होंने भी कॉल डिस्कनेक्ट की। तो उनके नाम भी, और जनाब इस वक्त बाबर शाह पे शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे। और इस गीत को जनाब स्पेशली अमजद अकीम भट्टी साहब आपके नाम भी, और अमजद भाई आपके नाम भी करेंगे, मोहम्मद बिशारत भाई आपके नाम भी करेंगे क्योंकि बड़ा प्यारा गीत है, और नदीम मंसूर साहब के नाम भी करेंगे, और अब्दुल क्यूम साहब जो हैं फ्राइजिंग हॉल वाले उनके नाम भी करेंगे, और चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं उदय नारायण की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए।

0: जी दोस्तों, अभी आपने उदित नारायण की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत पेश किया। उम्मीद रखता हूँ जिन दोस्तों के लिए पेश किया उन्हें पसंद आया होगा। और अब दोस्तों वक्त हुआ जाता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत आ रहा है जनाब, वो सैयद अली अमीर शाह जी मांचेस्टर से। आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का सैयद अली अमीर शाह जी। आप वहाँ मांचेस्टर में सुन रहे हैं तो आपके नाम करेंगे कमर्शियल के बाद जो गीत होगा। और उसके बाद मलिक इम्तियाज साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर और इफराज के लिए गीत सुनना चाहते हैं तो उनके नाम करेंगे। और साथ में ही प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी, आपके नाम भी करेंगे। इसी गीत को मूना जी, आपके नाम भी करेंगे। और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं, छोटी सी कमर्शियल है, उसके बाद आप जनाब एक प्यारा सा गीत सुनेंगे।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। आप दोस्तों के लिए प्यार से पेश किया था। उम्मीद रखता हूँ आप सब ने उसको एंजॉय किया होगा। सैयद अली अमीर शाह जी, मैनचेस्टर से आपने फ़ोन किया, माजर चाहते हैं आपकी कॉल नहीं ले पाया हूँ मैं। अगर अभी आप फ़ोन करेंगे तो आपकी कॉल मैं ले सकूँगा। और उसके बाद बहना सोनिया, आपने बर्मिंघम से फ़ोन किया, आप वहाँ सुन रही हैं, तो ये गीत उम्मीद रखता हूँ आप भी पसंद करेंगी और आपके साथ साथ जितने सुनने वाले हैं सभी पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप प्यारे सुनने वालों के लिए।

0: पलकें उठा के देखिए, क्या बात थी गाने की। यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को पसंद किया होगा। उदित नारायण और अनुराधा पडवाल की प्यारी सी आवाजों में ये प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया। और दोस्तों अब जो वक्त है वो हो चुका है जनाब टाइम चेक का, तो चलेंगे टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:45 यानी के 12:45। तो छोटी सी कमर्शियल है जनाब, कमर्शियल के बाद एक पुराना गीत होगा, इतना पुराना भी नहीं लेकिन क्या है कि ये गाना, ये फिल्म जो है ये 1980s में रिलीज़ हुई थी, तो इसका मतलब ये हुआ 46 ईयर ओल्ड ये गाना है। तो आप दोस्तों के नाम करेंगे। चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप अपने तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज करते हैं और साथ में एक प्यारा सा गीत अपने दोस्तों के लिए सुनना चाहते हैं। तो जनाब कमर्शियल के बाद जो गीत होगा ये आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम होगा जनाब। उसके बाद इसी गीत को सैयद अली मीर शाह जी मैनचेस्टर से आपके नाम करेंगे, सोनिया बहन आपके नाम करेंगे, मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम, और उसके बाद हीरा खान साहब, महबूब अलाई साहब, अमजद भाई और मोहम्मद बशारत साहब, नदीम मंसूर साहब, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑल वाले, वाजिद भाई और चौधरी मुजफ्फर साहब जनाब, उसके बाद चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, अमजद हकीम भट्टी साहब, सफ़ीउल्लाह भाई और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बशारत अली सिकंदर अली आरफ अली उनके लिए भी और दीगर तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त संडा रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो जनाब उसके बाद इसी गीत को जनाब हमें फ़ोन किया था हमारे बहुत ही प्यारे जनाब जफर इकबाल साहब ने, जो हमारे ब्रेडफो मोर के काउंसलर हैं, उन्होंने और कहा था सभी सुनने वालों को मेरी जानब से सलाम देना और दोस्तों को भी सलाम देना और एक प्यारा सा गीत प्ले करना। तो जफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम, तमाम सुनने वालों के नाम ये गीत होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा दो गाना, उसके बाद और इसी गीत को माजे चाहते हैं, भूल गया हूँ, अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। आशा भोसले और मोहम्मद रफी मरहूम की आवाजों में कुर्बानी फिल्म से लिया हुआ गीत था। और दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं। अब तारिक भाई, आपने फोन किया, शुक्रिया। और ये गीत मैं तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनलाइट रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और अब ये जो आवर है ये सिर्फ और सिर्फ जनाब लाइव कॉल्स का होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ गई है जनाब, पाकिस्तान से पहले चौधरी फिराज से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और फिर नदीम मंसूर साहब जुड़ गए और अब अयूब चौहान साहब जुड़ गए हैं। तो चलते हैं पहले सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों इन दोस्तों से मिलते हैं।
1: Hit of the Hour brought to you in association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and legal needs. Call 01274-559-565.
2: फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहां मिलती है।

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही चलते टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 1:11, यानी कि 11 मिनट पास्ट 10। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रेडफोर्ड से जनाब लतीफ मंसूर साहब और ओल्डम से जनाब अयूब चौहान साहब। तो चलते हैं तालियों की गूंज में, हम सुनते हैं जनाब लतीफ मंसूर साहब को खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, जी अनु कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हुजूर कैसे हैं? ठीक हैं और काम पर?
2: जी जी जी जी जी,
0: चलिए अच्छी बात है, काम भी हो रहा है। और जनाब आप हमारे शो में भी आ गए और लोगों की दिली मुराद भी पूरी कर दी।
2: जरूर जरूर, क्यों नहीं।
0: जी सर, क्या लेकर आए हैं? बातें आपसे नहीं करूंगा क्योंकि आप ब्रेक पे हैं, तो कम से कम अच्छा, थोड़ा सा भी खा भी लेंगे ना।
2: ये टप्पे भी हैं, गीत भी है।
0: ओहो,
2: और बड़ा प्यारा है, किसी ने लिखा है।
0: वेरी गुड।
2: और मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे साथ काम भी करते हैं, अब्दुल हमीद खान साहब, उनके लिए और सबके लिए।
0: ठीक है सर।
2: जी
0: जी।
2: चन्ना जानी अज कल्ला छोड़ के ना जा,

मड़ा तोड़ के न जा, चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के न जा, निकाजे या दिल मड़ा तो

0: बेड़ा तोड़ के न जा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय क्या बात है भाई, मैं तारीफ क्या करूं आपकी नदीम मंसूर साहब, क्या बात है आपकी, क्या आपने ये टप्पे सुनाए, आप से ही कहा था गीत भी इसे कह सकते हैं और टप्पे भी, और वाह जी वाह, कमाल हो गई है, कमाल हो गई है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, इतनी प्यारी चीज सुनाई कि दिल खुश हो गया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ओके अल्लाह हाफिज, ढेर सारी तालियां जनाब नदीम मंसूर साहब के लिए, क्या इन्होंने गीत सुनाया जनाब, दिल गार्डन गार्डन हो गया जनाब, बहुत अच्छा लगा इनका सुन के इनको। और अब जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब अयूब चौहान साहब मैनचेस्टर से, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जावेद मीर भाई भी, लेकिन वक्त हुआ चाहता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, यूं गए और यूं वापस आए।
2: 24 hours a day.
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें, मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Sunrise Radio, Sunrise।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है, और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है, और जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे साथ जुड़ी हुई है प्यारी सी शख्सियत जनाब ब्रेडफोर्ड से जावेद मीर भाई और ओल्डम से अयूब चौहान साहब, तो तालियों की गूंज में चलते हैं जनाब ओल्डम में, जहां हमारे प्यारे दोस्त जनाब अयूब चौहान साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। अयूब चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक है?
1: ओ मैं ठीक हूँ सर जी, तुसी सुनाओ तुहाडा की हाल जी?
4: मैं माड़ा हाल नहीं पूछो दे।
1: ओए होए होए होए होए होए, की होया? ओ दुश्मन दी नजर लग गई?
4: दुश्मन दोस्तों दी नजर लगी?
1: अच्छा अच्छा, फिर दुश्मन दी लोड कोई नहीं?
4: दुश्मन की नजर कभी नहीं लगेगी, वो तो आप लोग की लगती है ना।
1: हाँ सही है, सही है, वाकई सही है, नजर प्यार से लगती है ना।
4: कुछ काम से मसरूफ, कसर में वो आपकी भाभी जा रही है ना आज के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
4: तो कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ मिलना मिलाना।
1: बिजी बिजी बिजी।
4: अभी अभी मैंने मोबाइल पर आपका रेडियो बार बार ऑन करूं तो वो मुझे लंदन की तरफ ले जाए।
1: चलिए कोई नहीं, वो भी सनराइज ही है ना।
4: तो मुझे बड़ा गुस्सा, नहीं मैं आपको सुनना चाहता हूँ।
1: अच्छा, अच्छा,
4: क्यों क्यों क्यों जबरदस्ती मुझे कुछ हो जाए?
1: अच्छा, इसलिए मूड खराब हो गया
4: ये मूड खराब हो गया।
1: होए होए, चलिए कोई बात नहीं।
4: इसके अलावा बाल भी कटवाए मैंने, वो इस वीकेंड में एक शादी भी आने वाली है।
1: अच्छा,
4: तो वो मैं अटेंड करूंगा, आपकी भाभी तो इधर होगी नहीं।
1: आए, तो आए, आए, आए, आए, कितना मुस्कुरा के, कितना हंस के और कितनी खुशी के साथ। हाँ खुशी तो है, क्योंकि अल्लाह का घर किस्मत वालों को, नसीब वालों को नसीब होता है। भाभी किस्मत वाली वह जा रही है, लेकिन आप के लड्डू कुछ और ही जो है ना वो बता
4: वो बेटा भी साथ जा रहा है ना, तो
1: हाँ,
4: लाव जा रही है।
1: अच्छा,
4: तो मैं तो
1: लड्डू और तरह दे फुट रहे ने हो?
4: नहीं मैं फुट रहा ना, बस आपको थोड़ा खुश करने की कोशिश।
1: मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं तो वाकई खुश हूँ, वो तो कोई शक नहीं, क्योंकि भाभी मेरी जो है वो अल्लाह उन्हें अपना घर नसीब करे, रोजा रसूल नसीब करे, वो तो वाकई खुशी है। लेकिन आपकी खुशी से मैं थोड़ा मुतासर हुआ कि आपकी कोई ज्यादा ही और तरह की होगी।
4: मैं जब अपने आप को विलन पेश करता हूँ ना, तो आपको आपके अंदर फूल से खिलते हैं, इसलिए अपने आप को।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
4: मैं शायरी सुना देता हूँ, शायरी सुना देता हूँ। अभी मुझे बात करनी है, फिर इबादत के लिए भी जाना है।
1: ठीक है।
4: अच्छा
1: ठीक है।
4: अच्छा, सब ने मुझको चुप रखने की कोशिश की।
1: ओए होए।
4: जब भी मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मैं ये समझा उसने मुझको चाहा है।
1: आहा।
4: उसने मेरा दिल रखने की कोशिश की।
1: ओहो, क्या बात है, क्या बात है।
4: जाने मैं जो समझा हूँ वो ठीक भी है।
1: हाँ।
4: जाने उसने क्या कहने की कोशिश की।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
4: मुझको एक लम्हे ने सारी उम्र रुलाया।
1: ओए होए।
4: मैंने जो एक पल हंसने की कोशिश की।
1: वाह वाह, क्या बात है।
4: वो भी मेरे बात सुना है, खूब जिया। मैंने भी जिंदा रहने की कोशिश की।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
4: तो ये थी। अब आई बारी शायरों की।
1: अच्छा।
4: शेरों लतीफों की।
1: अच्छा जी।
4: एक आदमी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दीवार बनाने के लिए कुछ मांग रहा था।
1: अच्छा जी।
4: दूसरे आदमी ने कहा, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दीवार बनाने की क्या जरूरत है, जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर है वो अपनी मर्जी से कभी अंदर नहीं जाना चाहते।
1: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। खुशी से कोई दुनिया छोड़ने को तैयार ही नहीं होता।
4: एक और है। तीन दोस्त अपने अपने वालिद की तारीफें कर रहे थे।
1: अच्छा जी।
4: एक दोस्त ने कहा, मेरे वालिद बहुत बड़े डॉक्टर हैं।
1: अच्छा जी।
4: दूसरे ने कहा कि मेरे वालिद बहुत बड़े वकील हैं।
1: अच्छा जी।
4: तीसरा बोला, मेरे वालिद ऐसा काम करते हैं, इनके सामने बड़े से बड़े लोग थर जिकाते हैं।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या बात है।
4: आखिर वो क्या काम करते हैं, वो बाल काटते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा
4: तो ठीक है जी, आप मैं इंशाल्लाह जिंदगी वफा की कोशिश करूंगा संडे आने की
1: इंशाल्लाह। आपको अच्छा, भाभी जा रही है तो वो आप अकेले घर में होंगे तो कोशिश करूंगा।
4: नहीं, उस शादी पर जाना है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, शादी पर जाएंगे। अच्छा,
4: लोग काफी दूर जा रहे हैं ना।
1: अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक,
4: तो अगर फुर्सत मिली तो आऊंगा।
1: ना फिर ठीक, फिर ठीक है, हम समझते हैं, समझते हैं। ठीक,
4: चौधरी फरियाद साहब को और चौधरी मुजफ्फर साहब सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम
1: जी।
4: तो अभी घर जाऊंगा ना, जयपुर, तो बड़े अच्छे से भाभी दो पराठे बना के तैयार कर रही थी।
1: अच्छा,
4: तो हाँ, खाऊंगा आराम से। ठीक है,
1: उनको बोलना को कोई 200-500 पराठा बना के रख दें, ताकि फ्रीजर में रख दें, फिर आप खाते रहे ना।
4: नहीं नहीं, वो मिल जाते हैं, मैं वो नहीं जाते हैं। मैं आपको भी खाना बनाना शुरू सीख रहा हूँ अभी।
1: अच्छा, सीख रहे हैं, चलिए अच्छी बात।
4: हाँ, सीख रहा हूँ।
1: अच्छी बात है, बहुत पहले सीखना चाहिए था, अगर सीखे हुए होते ना पता नहीं आप कहाँ होते। तो चलिए अच्छी बात है।
4: मैं कहाँ होता तो खाना बनाना सीख।
1: कोई पता नहीं कहाँ होते भाई, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं आप पे, कोई मुझे तो भरोसा नहीं आप पे।
4: मैं ज्यादा टेक वे पर जाता, शेफिंग करता।
1: नहीं नहीं, शेफिंग भी ना करते, पर पता नहीं क्या करते, बर कैफ आप यहाँ होते नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबान, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब अजीत चौहान साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब चौधरी फरियाद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जनाब ढेर सारी तालियां एक बार हो जाएं जावेद मीर भाई के लिए। जावेद मीर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी मेरी जान,
5: क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरे।
1: अल्लाह आपको सलामत रखे।
5: तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम
1: जी,
5: और जो आए हैं और जो आने वाले हैं उन्हें भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम
1: जी।

और कल भी रहेगा इन प्यार की राहों में, कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं। और चांदी के कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। इन प्यार की राहों में, कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं। और चांदी के कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पर सदा इख्तियार था, सदा

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट वन। तो जनाब, अब कोई दोस्त फ़ोन करना चाहे तो मैं आपकी कॉल ले सकूंगा, और मेरा और आपका साथ भी इतना कोई लंबा टाइम नहीं रह गया है, बस 12-13 मिनट का साथ रह गया है। तो जनाब चलते हैं, अब जो है वो आप दोस्त जो है कमर्शियल, छोटी सी कमर्शियल सुने, उसके बाद आप पे वो गीत सुनेंगे जो जावेद मीर भाई ने गुनगुनाया, आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे उनकी जानिब से। और जनाब उसके बाद आपसे मिलते हैं।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
5: We love Sunrise Radio.
6: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
7: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था और आज भी है और कल भी रहेगा। क्या गीत था लता जी और मोहम्मद रफ़ी मरहूम की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना, और ये गीत जावेद मीर भाई ने गुनगुनाया था, तो मैंने सोचा चलिए ये गीत जो है आप सभी सुनने वालों के नाम करता हूँ। और दोस्तों इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ जाता है। अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात जनाब कल सुबह 11:25 पे होगी। तब तक के लिए मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।

सर्विस का नाम याद रखें, मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

once upon a time, when I was young.

0: नफसेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: Right, that was amazing. A track hit of the hour. आपने पसंद किया, enjoy किया, बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और यहाँ भी हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: All right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday clock, it's 13 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night to wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the power of his gun. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी और ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन ऑल योर नेम्स. हेलो हाय, जो मुझे फ्लश कर चुके हैं और जो फ्लश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. लाइनें काफ़ी चमक रही हैं, धमक रही हैं और थैंक यू वेरी मच आप सबका भी. थैंक यू वेरी मच. एंड देन वंस अगेन I would like to thank you very much all those beautiful listeners that came in on my program on Sunday evening between the hours of 9 and 11. Bobo shukriya aap sabka bhi, or between 8 and 9. Bahut bahut shukriya. Thank you very much for taking the valuable time out for me. Bobo shukriya aap kabhi. Aur yahan pe choti si nanni munni si break hogi aur break ke foran baad I will mention you all your names jo mujhe flash kar rahe hain. Line kafi chamak rahi hai, damak rahi hai.

0: That's Bradford 723030.
1: राइट वेलकम बैक लिसनर्स, योर लिसनर्स सनराइज डेफिनेटली, और बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आज कॉल आई है किदन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे पापी जान सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दनविया लवली कॉल फ्रॉम अतिका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी। सितारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी, आपने हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी, हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सईद एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लग रहा है विद द हेल नंबर जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और फर्दन फर्दन साहब का नाम लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे याद करें। चौधरी फरियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े हुए। और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, हमारे गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान हैं, आप दोस्तों के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि गीत को हम इन्जॉय करेंगे। नदीम मंसूर साहब, ये गीत आपके लिए भी होगा, और इन्जॉय द ट्रैक, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून, एन्जॉय।

Right, that was a wonderful tune. Moving on to another beautiful tune track, or ye geet hoga Abdul Qayyum sahab aapke liye hoga, Chaudhary Firaz sahab aapke liye, Gidan bhai, Pabijan Shmitra ji, ye geet aapke liye, Atika sahab, ye geet aapke liye hoga. Khumi from Wajid bhai ne hame yaad kiya aur aapne sab ko sunne walon ko salam pesh kiya. Chaudhary Firaz sahab aapke liye bhi hoga, mujhe umeed hai yakeen ke aap enjoy karenge. Sab sunne walon ke liye hoga aur hamare Shweb bhai, ye geet aapke liye bhi, aap hi kya yaad karenge. Bahut khoobsurat geet hai, Nadeem Mansoor sahab, ye geet आपके लिए भी होगा. थैंक यू वेरी मच फोन करने का. और सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें फ्लश कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शमाइल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद कर रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच आपका भी. और नॉट फॉरगेटिंग अ लवली कॉल फ्रॉम नूर जी ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. वंडरफुल ट्यून फॉर ऑल दोज वंडरफुल वंडरफुल कॉलर्स जो हमें फ्लश कर रहे हैं. चौधरी रुखसार भाई, ये गीत आपके लिए भी होगा. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, बहुत खूबसूरत गीत है और वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, आप एंजॉय करें. और जकल खैर के आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. खालिद पट्टी साहब, ये गीत आपके लिए भी होगा, एंजॉय द ट्रैक.

Wow, what amazing, amazing, amazing tune. That was one of my favorite tune. Dr. Malik Sahab, bahut shukriya. Aapka bhi aapne enjoy kiya, pasand kiya. Bahut shukriya. Thank you very much. Hamara kaam ho gaya. Bahut shukriya. Aapka bhi. Aur we had a lovely call. Well, I had a lovely call from Shabrez bhai. Bahut shukriya. Aapka bhi. Hamari taraf se mubarakah, mubarakah, mubarakah. Kyunki Junaid aur hai Junaid Sahab ke ghar mein ek nanni munni si pari aayi hai. MashaAllah. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. MashaAllah. Mubarakah, mubarakah. Der ki mubarakah. भाई हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगा कि माशाल्लाह आपने भी हमें शामिल किया है और हम भी मुबारकबाद दे रहे हैं जुनेद लाइव जो एक नन्नी मुन्नी की परी है माशाल्लाह आपके घर में आई है और माशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे शाद आबाद रखे और हर नेमत से नवाजे माशाल्लाह हर नेमत से माशाल्लाह और किसी की नज़र न लगे और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह आपने भी हमें तोहफे दिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारी तरफ भी तोहफा है आपके लिए भी होगा डेफिनेटली और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे और जुनेद आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए हम दुआगो हैं और जो नन्नी मुन्नी की परी है उसके लिए खूबसूरत गीत आने वाला है और ये जो मेरा फेवरेट गीत है और मैं पेश करने जा रहा हूँ और जुनेद लाइव जो एक नन्नी मुन्नी की एक खूबसूरत माशाल्लाह में अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा आया माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत तोहफा माशाल्लाह और हमारी तरफ से आपको मुबारक मुबारकां मुबारकां ढेर की मुबारकां और ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ और हमारी तरफ से भी और शिब्रेश साहब की तरफ से जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई उनकी फैमिली की तरफ से माशाल्लाह और पूरे जो जो भी दोस्त बाबा अजीज़ हैं उनकी तरफ से भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जुनेद साहब आपके लिए ये गीत खूबसूरत गीत हमारी तरफ से इंजॉय

Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपने दोबारा फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शमाइल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल अज़ वेल, हमें अच्छा लगा कि आपने दोबारा फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत आपके लिए भी पेश करेंगे, मुझे उम्मीद है यकीन है आप इन्जॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है और यही गीत मैं पेश करूँगा डॉक्टर मालिक साहब आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। और शबरेज भाई आपके लिए भी और जिनेश साहब आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गिदन भाई हमारे पापी जान सुमित्रा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए भी होगा। नदीम मंसूर साहब हैं, अतिका साहिबा हैं और हमारे साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमारा साथ नशीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। साहिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सलाम पेश किया चौधरी फरियाज साहब को, उनकी पूरी टीम को। और ये गीत मैं पेश करना जाना आपके लिए भी होगा और शुक्रान ये गीत आपके लिए भी पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है। और सिमी जी ये गीत आपके लिए भी होगा, आपकी फैमिली के लिए होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये वो खूबसूरत गीत है, सईद एहसान हमारा प्रोग्राम सुनना जा रहे हैं लंदन में, और चौधरी रुखसार भाई हमारे मीठा जी हैं, ये गीत आपके लिए गया। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, बहुत खूबसूरत गीत है, एंजॉय द ट्रैक।

Right, that was amazing tune और आपने enjoy किया, बहुत अच्छा लगा, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और moving on to another beautiful track, Shamail, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शहबाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, this next track is gonna go out to you, और सोनिया जी from Bradford से आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये मैं गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद यकीन कि आप enjoy करेंगे, बहुत अच्छा लगा, and I think you called me first time in my program, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद यकीन कि आप enjoy करेंगे, और ये खूबसूरत गीत आप सबके लिए होगा, अली भाई ये गीत आपके लिए भी होगा, और यही गीत मैं पेश करूंगा, सुमन वेरी वेरी स्पेशल, तो सुमन वेरी वेरी स्पेशल ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून है, और रेखा जी ये गीत आपके लिए होगा, और थैंक यू वेरी मच फोन करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी माँ जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ रहें, चौधरी भाई हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा, एंजॉय द ट्रैक।

0: Brian, that was one of my favorite tune और आपने enjoy किया and that is amazing और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 46 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद I'm going to play for you amazing गीत होगा. Something different, something unique for all those lovely, lovely callers and especially the people are just joining. And बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.
2: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
5: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत.
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303.
7: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
8: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

Right, welcome back, listener. What a beautiful memory, and definitely that was a great memory going back in the memory lane. और आपने गाने को enjoy किया और हमारा काम हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया. आपने सब दोस्तों को सलाम पेश कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया. चौधरी फैसल साहब हैं, राजा आसफ साहब हैं, चौधरी बशारत हुसैन हैं, और राजा नबीर साहब हैं, और जंगीर साहब हैं, यसीन साहब हैं, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. और आपके जो दो दोस्त हैं चौधरी फरियाज साहब, उनके लिए भी होगा और सब टीम के लिए होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और नबीर साहब, ये गीत आपके लिए होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये जो खूबसूरत गीत है आप सबके लिए जो मेरे साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रान. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली. और ये गीत आपके लिए भी होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. दिस ट्रक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़ है और बहुत खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट गीत है. और हम आप सब दोस्तों के लिए पेश करें जो हमारे साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ. इंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. और अब्दुल कयूम सरप्राइजिंग ऑल आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.

राइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुन रहे हैं रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल एज वेल, हमें अच्छा लगा। योर लिसनर सुन रहे रेडियो 106.6 एफएम एंड 103.2 एफएम अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, एल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डेवन, नेल्सन, अकिंटन और मिंटन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों जो मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं। और वेरी वेरी वेरी वेरी सून वी गोना बी डेफिनेटली ऑन डीएबी प्लस ऑन द डाबी लॉन्चिंग वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी सून। और ये हमारी खुशी नसीबी है देखो। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट इन एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर ऑन www.sunriseradio.fm and www.sunrise.radio and that is all about। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारा यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हम आपको सुनाएंगे, बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनाएंगे और वो होगी माशाल्लाह अजान की, माशाल्लाह अजान होगी माशाल्लाह और मगरिब की अजान यहाँ पे ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, लख लख शुक्र अदा करते हैं कि ये भी हमें सरफ हासिल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और यहाँ पर चंद सेकेंड रह गए हमने यहाँ पर करने हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। जो भी मेरे बहन भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिटवीन आवर्स ऑफ 8 and 9 एंड नाउ 9 and 10 and 10 and 11, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और यहाँ पे हमने पेश करने हैं अजान इन ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में। अपने अपने मकामी टाइम टेबल को देख के सुन के अपने नमाज अदा करेंगे। मेरे लिए, मेरी फैमिली की दुआ करनी है, स्पेशली दुआ को गो करनी है, दुआ करनी है सबके लिए जो बीमार हैं, हमारे वाजिद भाई हैं उनके लिए खुद दुआ करनी है। और हम ही आपके लिए दुआगो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Right, welcome back and listening. You're listening to Sunrise Radio on 103.2 FM. और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच आपने आपका भी, और जो खामोशी के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स एंड वेलकम जी ने खुश आमदीद.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 13 minutes past 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. यहाँ पे निक्की जी बड़े क्योंकि यूं किया तो यूं आया, क्या हाल है? और जाना और आना, क्या हाल है? वही बात हो रही, जाना और आना. और नलो नाल.
2: Sunrise and music. अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस. 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है. खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है. महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल. बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल. अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर. यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो. और यहाँ भी हमने क्या करना है कि लाइव कॉल का सिलसिला है, हमने आगाज़ करना है और बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ है. और हमारे अपने आ रहे हैं, हमारे सज्जन आ रहे हैं और सज्जनों की महफिल है. और क्या कहेंगे इनके बाद, किस किस की मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और जो पीछे वाला बैठा हुआ उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. जो चोरी चोरी छुप के प्रोग्राम सुनते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और यहाँ भी

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल, यहाँ भी हमारा साथ देने अतीका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम। और कैसे थे भैया? ठीक ठाक, ठीक है आपकी?
1: जी सब अल्लाह का शुक्र है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जी,
1: आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र, करम करम मौला दे करम।
1: अल्लाह पाक का शुक्र ही होना चाहिए।
0: आमीन आमीन आमीन।
1: तो सबको सलाम करते हैं।
0: जी जी
1: हमारी सारी सखी सहेलियां हैं, सुमित्रा जी हैं और गिदर भाई हैं और रेखा जी हैं।
0: जी जी।
1: और सुमित्रा जी और गिदर भाई ने लास्ट टाइम भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाए थे।
0: जी जी।
1: हमेशा की तरह, और उम्मीद है कि वो इस दफा भी खूब अच्छे खूबसूरत सॉन्ग सुनाएंगे।
0: जी जी।
1: तो इंशाल्लाह वो आएंगे।
0: जी।
1: तो सुलीना जी हैं, सितारा जी हैं,
0: जी
1: आसिया जी हैं, अफसाना अफजल हैं,
0: जी
1: चौधरी फरियाद साहब हैं,
0: जी
1: वो उनके तो खूबसूरत सॉन्ग फिर सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन अभी वो सॉन्ग सुना नहीं रहे।
0: अच्छा वाह जी वाह, चौधरी साहब तैयार हो जाओ, अच्छा गाने की फरमाइश आ चुकी है, क्या कहने। जी जी।
1: उनकी खूबसूरत शायरी पंजाबी की बहुत ही खूबसूरत होती है हमेशा की तरह। जवेद मीर साहब हैं
0: जी,
1: नदीम मंसूर साहब हैं, जिनके सॉन्ग सुन के सारी महफिल जो है ना।
0: वाह जी वाह, आज वो धमाका करेंगे और क्या गीत लेके आ रहे हैं, वो क्या कहने जी। वाह जी वाह।
1: तो आपने जो आज सॉन्ग लगाए थे ना,
0: जी जी,
1: वो बहुत ही क्या उसको नाम दो, हसीन।
0: बहुत ही हसीन लाजवाब गीत है, और क्या कहने जी। वाह जी वाह, क्या कहने।
1: वो जो महबूब की मेहंदी के सॉन्ग लगाया था ना,
0: जी जी जी,
1: जितनी बार भी सुनो
0: ऐसा लगता है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, इसमें कुछ शक नहीं,
1: सॉन्ग बहुत लाजवाब थे।
0: जी जी।
1: और ये आप ही लगा सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू
1: थैंक यू, आपका भी सुनाने का इतने खूबसूरत सॉन्ग।
0: जी।
1: तो ये आपकी रंगे महफिल में जो सॉन्ग होते हैं और सारा प्रोग्राम होता है,
0: सिर्फ
1: आप ही की वजह से ये खूबसूरत बनता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो पापा जी हैं और नदीम मंसूर साहब आएंगे और खूबसूरत महफिल सजाएंगे।
0: जी।
1: और शकील जी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आएंगे।
0: जी जी।
1: सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब है, अब्दुल कयूम साहब की शायरी है
0: बड़ी बेमिसाल, कमाल की शायरी कहते हैं, और आजकल गाना भी गुनगुना रहे हैं, और गाना आज शायद गुनगुना दें और देखते हैं क्या होता है।
1: उनका हमेशा ही गाना जो भी गाते हैं
0: बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा।
1: यानी मुदस्सर साहब है,
0: वो गैर हाजिर है, अल्लाह खैर ही कर रहा है, पता नहीं क्या हो जाए, वो गैर हाजिर है, 2-3 हफ्ते हो गए उनके यहाँ पे गैर हाजिरी लगी हुई है, और मैं देख रहा हूँ गैर हाजिरी उनकी लगी हुई है।
1: वो आएंगे
0: जी।
1: सजार साहब हैं और एफ ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, इंशाल्लाह वो भी शिरकत करेंगे और खूबसूरत आवाज में सॉन्ग सुनाएंगे।
0: जी।
1: और तारिक भट्ट साहब हैं, राणा नवीस साहब ने लास्ट इंटरव्यू मारी थी,
0: क्या कहने,
1: और बहुत लाजवाब
0: लाजवाब, क्या कहने क्या कहने क्या कहने।
1: आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, और चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: तो ये अशआर हैं, सबके नाम करेंगे।
0: जी जी।
1: ये अशआर मुझे बहुत पसंद हैं।
0: जी
1: अशआर। तो सबके नजर करते हैं। ये मोहब्बत जो मोहब्बत से कमाई हुई है,
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: ये मोहब्बत जो मोहब्बत से कमाई हुई है,
0: वाह,
1: आग सीने में इसने तो लगाई
0: हुई है। वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: आग सीने में उसने तो लगाई हुई है, एक वही फूल मुयस्सर ना हुआ दामन को।
0: बहुत खूब।
1: एक वही फूल मुयस्सर ना हुआ दामन को, जिसकी खुशबू मेरी रग रग में समाई हुई है।
0: आहा, क्या कहने क्या कहने।
1: जब भी आंखों ने सजाए हैं तुम्हारे सपने,
0: वाह,
1: जब भी आंखों ने सजाए हैं तुम्हारे सपने,
0: वाह,
1: जहन और दिल में बहुत देर लड़ाई हुई है।
0: वाह जी वाह वाह वाह।
1: जहन और दिल में बहुत देर लड़ाई हुई है, दिल की चौकट पे जला रखे हैं आंखों ने चिराग, दिल की चौकट पे जला रखे हैं आंखों ने चिराग।

0: वाह,
1: किसकी आमद की अभी आस लगाई हुई है।
0: वाह जी वाह,
1: इसकी यादों से मनवर है मेरे दिल का जहां। इसकी यादों से मनवर है मेरे दिल का जहां।
0: वाह,
1: आंसुओं से मेरी आंखों की सफाई हुई है।
0: वाह,
1: आंसुओं से मेरी आंखों की सफाई हुई है। ऐ मोहब्बत तेरा चेहरा, तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है।
0: वाह,
1: ऐ मोहब्बत तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है।
0: वाह,
1: जैसे एक तू ही जमाने की सताई हुई है।
0: बहुत खूब,
1: जिसकी किरणों से जुलस जाते हैं रोशन चेहरे। जिसकी किरणों से जुलस जाते हैं रोशन चेहरे।
0: वाह,
1: चांदनी भी सूरज की बनाई हुई है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: ये मोहब्बत जो मोहब्बत से कमाई हुई है। आग सीने में इसने तो लगाई हुई है।
0: बहुत खूब, वाह।
1: जब किसी उदास शाम, कैसी उदास शाम थी, पांव पलट गए, चुपचाप जिंदगी के किनारे से हट गए।
0: वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: बारिश में किसकी याद की अंधी हवा चली, जितने हरी में जामे दिए थे उलट गए।
0: वाह,
1: जितने हरी में जामे दिए थे उलट गए। फूलों के पीछे भागते हम मुंह के बल गिरे।
0: वाह वाह,
1: उठे तो सारे जिस्म से कांटे लिपट गए।
0: बहुत खूब, वाह वाह।
1: फूलों के पीछे भागते हम मुंह के बल गिरे। उठे तो सारे जिस्म से कांटे लिपट गए।
0: वाह वाह,
1: इतना कुचल के गुजरी है इस बार जिंदगी। हम बद नसीब सैकड़ों हिस्सों में बट गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: फिक्रे माश खा गई आवारगी के दिन। इतना चले कि खुद से भी क्रोध कट गए।
0: बहुत खूब,
1: थोड़ा सा सांस लेने की मौलत तो दे मुझे। इस बाग दौड़ दे तो मेरे पांव फट गए।
0: बहुत खूब, वाह।
1: बरता है हमको वक्त ने इस तरह उम्र भर, जितने थे जिंदगी के सब सारे रट गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: गरिया गुजारी हुई आंखों की खैर हो। गिरिया गुजारती हुई आंखों की खैर हो।
0: वाह,
1: किसी के हिजर के कर्जे निबट गए।
0: वाह,
1: कैसी उदास शाम थी, पांव पलट गए। चुपचाप जिंदगी के किनारे से हट गए।
0: वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: तो कहते हैं कोई, एक मिनट, कोई आकर हमें
0: जी जी,
1: जहाँ फूलों को सिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था।
0: वाह,
1: तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था।
0: बहुत आला।
1: कोई आकर हमें पूछे तुम्हें कैसे बुलाया है। तुम्हारे खत को अश्कों से शबे गम में जलाया है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: हजारों जख्म ऐसे हैं अगर सिलते तो अच्छा था। तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: जहाँ फूलों को खिलना था वही खिलते तो अच्छा था।
0: वाह,
1: तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था।
0: वाह, क्या कहने।
1: तुम्हें जितना बुलाता हूँ तुम्हारी याद आती है।
0: वाह,
1: बहार नो जो आई है वही खुशबू ही लाई है।
0: वाह,
1: तुम्हारे लब मेरी खातर अगर हिलते तो अच्छा था।
0: वाह जी वाह,
1: तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था।
0: वाह,
1: तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मिला है लुत्फ भी हमको हसीन यादों की जिलमिल में। मिला है लुत्फ भी हमको हसीन यादों की जिलमिल में।
0: वाह,
1: कटी है जिंदगी तुम बिन मगर इतनी सी है दिल में।
0: वाह, क्या कहने, क्या कहने।
1: अगर आते तो अच्छा था, अगर मिलते तो अच्छा था।
0: वाह,
1: तुम्ही को हमने चाहा था, तुम्ही मिलते तो अच्छा था।
0: वाह, क्या कहने,
1: बस इतना ही था।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही कमाल का दिए, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। कमाल का दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वाह, जतीका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं नदीम मंसूर साहब, हमारे साथ हैं, वेलकम जी, आएंगे कहेंगे जी खुश आमदीद यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र करम
0: माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र आप आ गए और हमें क्या चाहिए मेरे भाई, और हम इंतज़ार में हैं। और जो गाना ओए होए सदके जावा कुर्बान जावा, और जिन्होंने आपकी फरमाइश की है उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इतना खूबसूरत गीत आप लेके आए। वाह,
2: चले मैं खुश करता हूँ।
0: जी जी जी,
2: आपकी नज़र आपकी नज़र।
0: वाह जी वाह, थोड़ा सा हट के ये गीत है और सब सुनने वाले के लिए भी होगा, और ये एक गीत मेरे ख्याल में पहली दफ़ा आप गुनगुना रहे हैं।
2: जी जी, ऐसा ही है,
0: ऐसा ही है ना, क्या कहते हैं, क्या कहने है। क्या कहने, और मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम में गाना नहीं है, ठीक है, ये भी पहले बता रहा हूँ।
2: ये भी ऐसा ही है।
0: कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैं सबको कह रहा हूँ कि कोई गाना यहाँ पे सिस्टम में ना होना तो कोई बात नहीं, हमारे नदीम मंसूर साहब है ना, कोई भी गाना आपने सुनना है, आपने फरमाइश करनी है, नदीम मंसूर साहब हैं और बाकी के दिग्गज जो दोस्त वाब हैं वो भी आपको सुनाएंगे और बड़ा ही अच्छा लगेगा। और जी गो हैड। जी
2: जी जरूर
0: जी।

0: गया
1: वाह
0: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराब ये दिल हो गया।

0: वाह,
1: दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा
0: वाह,
1: मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे,
0: वाह
1: मैं

0: गया।
1: वाह।
0: मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं।
1: वाह।
0: तेरी कसम ख्वाबों में भी।
1: वाह।

0: वाह
1: जो तेरी देखी
0: वाह
1: शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वाह मेरे भाई कमाल कमाल कमाल। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के चख आ गए मज़ा आ गया मेरे भाई वाह वाह वाह वाह वाह कमाल ही कर दिया और इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया और मैं ये कह रहा हूँ कि ब्यूटीफुल अमेजिंग जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूँ कम है मेरे भाई और जिन्होंने फरमाइश की है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका और वो कह रहे हैं कि एक और गाना नेक्स्ट सुनाएंगे नेक्स्ट आवर में जब आपको मौका मिले। तो ये थी द ट्रेन 1970 की मूवी थी और बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई नदीम साहब आपने वाकई कमाल कर दिया जो लल्ला कह रहे हैं ओए हाय हाय क्या कहने वो तो मजा था जो क्या है ना क्या कहने वाह वाह वाह कमाल ही करे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आप आए और बाहर आ गए और हमें अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया और हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट आवर में बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें दुआ मुझे और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर हमारे भाई और गुरु जी हैं वेलकम जी अन खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: वालेकुम सलाम भाई जान कैसे हैं आप?
0: मैं तो ठीक हूं फर्स्ट क्लास है A1 हाउ आर यू ठीक ठाक हैं से ठीक है आपकी?
2: जी हम तो ठीक ठाक है।
0: वाह कमाल कर दिया आपने गाना सुना है हमारे नदीम सिंह मंसूर साहब का नदीम साहब
2: हां वो कुछ बोल रहा था संभालो मुझको ये क्या हो गया
0: क्यों संभालना ये मुझे पूछे क्यों संभालना है उनको क्या कहने
2: हम सब साथ होते तो संभाल लेते
0: वाह वाह वाह कमाल कर दिया कमाल जी और आपकी भी फरमाइश है और वाह जी वाह डॉक्टर साहब इंतजार में कि आप आए और माशाल्लाह क्या कहने जी।
2: अच्छा पहले मैं सबका सलाम बोल दूं।
0: जी जी
2: हमारा शकील भाई है जावेद मेर भाई है
0: जी जी माशाल्लाह
2: मोहम्मद हनीफ भाई है साजिद भाई है
0: जी
2: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई है
0: उस्ताद चौधरी फरियाद भाई
2: उस्ताद को आज गाना पड़ेगा
0: गाना पड़ेगा वाह वाह वाह आज दो फरमाशें आ गई दो हो गए देखते हैं कितने हमारे जो चाहने वाले होंगे और जितने ज्यादा फरमाइश करेंगे ज्यादा हम गाना गुनगुनाएंगे कहेंगे गाना गुनगुनाएं ठीक है दो तो हो गई जी
2: उसको जो मिला है ना टाइटल उस्ताद का वो उसको रखना पड़ेगा
0: हाँ रखने पर ये ना हो कि किसी और को दे दें हम और ये भी हो सकता है क्या है जी
2: तो पहलवान भाई है इकबाल भाई है पापा शफीक है डॉक्टर मलिक है मोहम्मद रफी साहब है उसके बाद हमारा परवेज खान भाई है सलीना खान है आसिया जी है अतिका जी सलीना जी सिमी जी रेखा जी अमिता जी सरा जी मिस्टर मिसेस पटेल और जितने जितने सुन रहे हैं सबको हमारा बहुत सलाम।
0: जी जी वालेकुम सलाम।
2: तो ये मैं जो आज गाना गा रहा हूँ वो रिपीट है जो मैंने संडे को भी गाया था लेकिन
0: जी
2: वो डॉक्टर मलिक साहब को
0: हाँ उन्होंने दोबारा फरमाइश की थी जी
2: सीमा जी को उसकी फरमाइश पे वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ
0: जी जी जी जी
2: तो शुरू करता हूँ
0: जी जी गो अहेड

0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और क्या कहेंगे, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने जी, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर, इतना खूबसूरत है गीत गुनगुनाया, बड़ा ही प्यारा गीत, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और जो भी अल्फाज, जो भी, और क्या कहने, वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट अ अमेजिंग ट्रैक दैट यू हैव डन एज़ वेल, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, ये दोबारा आपके लिए
1: जी।
0: और बाबी जान,
2: हेलो जी,
0: हेलो बाबी जान, हाउ आर यू गुड? माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबी जान आ गई, और बाबी जान के लिए ये वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, और भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया, गुरुजी ने तो कमाल ही कर दिया, इतना खूबसूरत गाना गुनगुनाया, बड़ा ही प्यारा गीत था, और बड़ा ही खूबसूरत गीत, वाह बड़ा ही प्यारा, और डॉक्टर साहब की फैमिली ने इंजॉय किया, और हमेशा ही वो तारीफ करते हैं आप दोनों की, माशाल्लाह सबकी तारीफ करते हैं फर्दन फर्दन, और अच्छा लगता है जब फीडबैक आती है, माशाल्लाह प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं जी। और आज क्या लेके आए हैं हमारे लिए? बहुत खूबसूरत जी,
2: चलो
0: जी गो हेड, नदीम नदीम नदीम नदीम,
2: बहुत अच्छा रोमांटिक गाना,
0: बड़ा ही खूबसूरत गाना, नदीम मंसूर साहब ने कमाल कर दिया, बड़ा ही प्यारा गीत जी।
2: पहले तो हमारा शकील भाई बल्ली वाला
0: जी जी,
2: मोहम्मद अली भैया है
0: जी जी,
2: ताजी भैया, सज्जाद पहलवान भैया
0: जी,
2: बल भैया, पापा शफी
0: जी,
2: डॉक्टर अली भैया
0: जी,
2: मोहम्मद रफी भैया
0: जी,
2: जितने लोग वाजिद भैया ठीक है अभी?
0: जी जी वो बीमार है, उनके लिए दुआ करें, और इज नो वेल एट द मोमेंट, बट स्टिल इन ऑन विद इट, यू नो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, इन और दुआ करें उनके लिए, दुआ करें मोहम्मद अनीस साहब हैं, उनके लिए दुआ करें,
2: जरूर हम सबके लिए दुआ करते, सबको खुदा हमेशा खुश रखे, बस
0: जी
2: तंदुरुस्त रखे। हमारी सखी सहेली में आई थी
0: जी,
2: आजकल अभी का गाना नहीं गया
0: जी,
2: ऐसा अच्छा अच्छा गाती है, आज नेक्स्ट टाइम इसको करना पड़ेगा
0: जी।
2: हमारी चलीना है, टिम्मी जी है, रेखा जी है, तारा जी
0: जी,
2: लोग आते हैं सबको मेरा सलाम,
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: आपको स्पेशल सलाम भैया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जान।
2: तो मैं लता
0: का गा लूं कि मुकेश का गा लूं? भाभी जान ऑल योर, जो भी आपका मन पसंद गीत है, जो आपकी ख्वाहिश मंद है, वो गाना गाएं जो आपको पसंद है,
2: लता का गा
0: लूं, चलो भाभी जान गो अहेड।
2: सारी सारी रात तेरी याद सताई,
0: हाय हाय क्या कहने,
2: सारी रात तेरी याद सताई, प्रीत लगाई हमें नींद आई रे, नींद आई सारी सारी रात तेरी याद सताई,
0: वाह वाह वाह क्या कहने,
2: तो बलम तेरी याद सताई, तुझे चंदा आग लगाई,
0: वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
2: आग लगाई तेरी प्रीत जगाई रे, नींद न आई सारी सारी रात तेरी याद सताई, तेरी लगन

0: मरीना
1: होए होए
0: बाली उमर मोहे बड़ा तेरे पाई रे
1: हाय हाय
0: सारी सारी रात तेरी याद
1: हाय हा क्या किन
0: तेरे जाके कोई तुम तो पराए
1: वाह
0: क्या किया को कौन बुझाए
1: वाह वाह वाह
0: जाए कोई है समझाए रे नींद न आए सारी सारी रात तेरी याद सताए
1: क्या कहने क्या कहने
0: बताए हमें नींद न आए रे नींद न आए
1: हाय हाय
0: सारी रात तेरी याद सताए
1: हाय हाय हाय
2: प्रदेश भाई मैंने बोला था नींद की गोली ले लो
1: ओए ओए ओए ओए ओए ओए भाभी जान सुना वो क्या कहने आपको क्या कहने वाह वाह वाह
0: आप मेरी बात सुनो ये वो जो गाता है मैं कभी इसका मजाक नहीं
1: करता मजाक
0: मजाक ही करता है
1: ये प्यार है ये प्यार है हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे बस आपका शुक्रिया अदा करेंगे वाह वाह क्या कहने क्या कहने इतना खूबसूरत गीत आपने गुनाया गुनगुनाया
0: मजाक नहीं होता तो जिंदगी में मजा नहीं आता
1: मजा नहीं आता ये खूबसूरत ये इसी का नाम जिंदगी है हमेशा मैं कहता हूँ कि इसी का नाम जिंदगी है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया और क्या खूबसूरत गीत गुनगुनाया और बस और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मजीद शुक्रिया अदा करता हूँ हाँ हाँ हाँ क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी तरफ से भी अल्लाह ताला हमेशा इस्लामिक जोड़ी इस्लामिक रहे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच हाँ हमेशा ही दुआ करते हैं आपके लिए सब ऑल द कपल्स आउट देयर माशाल्लाह हमेशा ही दुआ करें
0: हमारा बल्ली वाला भैया की अभी
1: इंतजार में है हमारे शकील साहब भी आएंगे माशाल्लाह इशफाक रसूल साहब जी बहुत फरियाद भाई का गाना आज का फरियाद साहब कुर्बान हो रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया वाओ That was हमारी पापी जान और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगा और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक करना है
3: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
1: Well, the time in the studio is 44 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with the Pavis Khan. यहाँ पे निक्की जी ब्रेक है छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे धमाका होगा और वो भी आ गए और छा गए क्या कहने क्या कहने और जो इंतजार में है पीछे माशाल्लाह उनका भी हम इंतजार करेंगे और आप हमें फोन कर रहे हैं तो आपने थोड़ी देर के बाद फोन करेंगे डेफिनेटली ऑन एयरवेव्स बहुत बहुत शुक्रिया आज नए कॉलर आने वाले हैं एक दो नए कॉलर आ रहे हैं और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं आपका भी और हमने दरवाजा खोल के रखा हुआ है आप सब के लिए यहां पे छोटी सी ब्रेक करेंगे कीप इट लॉक्ड
4: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें टाइम देने, आज उनकी छुट्टी है और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त जिशान डार साहब हैं, एक बहुत बड़ा नाम है यॉर्कशायर का। और वेलकम कहेंगे, जिए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरक जी हजूर।
1: वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। ओ बड़े निके जे बंदे हैं जी, तुसी किथे चुका ले जांदे हो सानू? बड़े छोटे जे
0: आदमी। नहीं नहीं नहीं, बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे अपने। और आओ आई नहीं, आप छुट्टी आप ना रहे और आपने मुझे टाइम दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी गो अहेड
1: जी। जरा मैं नॉन स्टॉप हो सी जी, इंशाल्लाह छोटा जा सिस्टम
0: जी। जी जी,
1: मेरा खुदा तो कोई और है, मेरा खुदा तो कोई और है, ना बशर है वो ना

0: है कुन है वो फाया कुन हो मेरा खुदा तो कोई और है। हूँ सुबह हो मैं अल्लाह हूँ हर शाम अल्लाह मेरे हैं दिन जहाँ में जो कहूँ दिन रात अल्लाह मेरे मालिक करम तेरा शुक्र करने की मोहलत दी अता मुझको जुबां कर वो करे दिन रात तेरा जिक्र बना ले मुझको अपना तू मिटा दे गलतियां मेरी मेरे हर काम में बरकत अता करने किया मुझको मेरी धीमी सी है आवाज तरन्नुम भी नहीं अच्छी मगर कहता हूँ मैं वो सब मेरे दिल से निकले जो करम रब का फजल सब ये मेरे कलम में मेरे बरकत जो करम रब का फजल सब ये कलम में मेरे बरकत जो जमी से आसमां तक की जो बातें ढूंढ लाता मैं आया सब खुदा ने ये कहा मैंने जो लफ्जों में
1: क्या कहना
0: दी जिंदगी हमने नहीं बेमकसद तुम जिंदा इबादत करते जाओ तुम इबादत को बनाया है हे मुश्किल में डालें जो भारी आजमाइश हो रहे साबिर तो इन सो जिन रहे जो राह सीधी पे अता कर देंगे उसको हम मीनो आसमां में जो चलो जो राह में मेरी यही मकसद है।

0: करता नहीं मैं इंसान से, रब का शुक्र रब का करम करता हूँ रब रहमान से, मेरी जान का मालिक है वो, हम सब का तो हालिक है वो, मेरे नबी सा कोई और ना, मेरे नबी सा कोई और ना। तम निकलने से पहले जरा सोच लो, क्या कहा क्या किया क्यों है ये हो रहा, जांच लो अपने आमाल को देख लो, क्या किया क्यों हुआ किस राह हो, दम निकलने से पहले जरा सोच लो। छल्ला माही पाया छल्ला माही पाया, होया तन मन पराया मेरा तन मन पराया, कहंदी तैनू अड़िया ले चल पार, अड़िया खिच मैनू पैंदी विचलिया माही पार, ना दे रार में तड़पा रातां कट दे दिन ना उस बिन, मिलना बहुत जरूरी ओ दी हर एक हजूरी, हां विच हां में मलानी पावे कमली बन जा, ली हो जा पावे छल्ला माही पाया, होया तन मन पराया,
1: वाह वाह वाह,
0: सुनी मार दवाणा पन के आ लैंदे सा यारा नाल,
1: हाय हाय
0: दरिया ते ठंडे जाली दे विच,
1: वाह वाह
0: दे कच्चे अद्धे पक्के,
1: वाह वाह
0: यारा दी महफिल लग जानी, कोई निका कोई वड्डा,
1: वाह वाह
0: कोई कच्चा कोई कच्छा बनैन सी पांदा, कोई सी दरिया विच नांदा, कोई डरदा पानी तू सी तारी लानी आंदी नहीं सी, कोई छाला दब दब मारे कोई कबदा किनारे बैठ,
1: वाजी वाह क्या
0: कहनी, मार दवाणा पन के खा लैंदे सा यारा नाल,
1: आय हाय क्या कहने, बहुत खूब।
0: पांच चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गए चार,
1: आय हाय
0: खबर को सुन के भागे बाकी सारे यार,
1: वाह वाह क्या कहने,
0: बाद रहा ना कुछ भी लुट गया कारोबार,
1: आय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह,
0: खुद तप के आया बाऊ बिल्ला, लाला डांगा कर लो हूं दंद जे दे चार इंच, खलोते कुत्तियां वांग,
1: आहा
0: टप के आया बाऊ बिल्ला,
1: आहा वाह वाह वाह कमाल कर दी कमाल,
0: के रोज पकाया ख्याली पुलाव मैंने,
1: आहा
0: ताजा ताजा ख्याली पुलाव
1: मैंने, आहा
0: ना था किसी ने अंडे खरीदे,
1: आहा
0: चूजे जो निकले मुर्गियां होंगी,
1: वाह वाह
0: ख्याली पुलाव पकाया था उसने,
1: हाय हाय
0: तोड़ के अंडे वो पछताया,
1: हाँ
0: एक रोज पकाया ख्याली पुलाव जो मैंने,
1: वाह जी वाह
0: ताजा ताजा ख्याली पुलाव
1: मैंने, हाय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह
0: कहंदी मैनू खेड़ लईए यस्सू पंजू हार कबूतर डोली, गुडियां पटोले खेड़ लईए टप शतापू लईए,
1: वाह जी वाह
0: सोणिया साला बाद मिली अज बचपन दी सहेली,
1: वाह
0: यादा होइया ताजिया लगे कल दी गल ए होनी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: तू छीमो पीरा कोडू याद आए ने सारे,
1: वाह वाह
0: ब्याह गुड़िया दे कर दे फिर दे नोनो सी सहेली,
1: वाह वाह क्या कह
0: कहंदी मैनो खेड़ लईए यस्सू पंजू हार कबूतर डोली,
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह जी वाह क्या कहने, बहुत
0: लेजी बहुत मैं रज के हूं,
1: आहा
0: करता नहीं मैं वर्क कोई,
1: आहा
0: खाना पीना और रेस्ट मुझे,
1: आहा
0: मैं तारे हर एक चीज से,
1: वाह
0: काम का मुझको डोंट से,
1: वाह वाह
0: हड हराम हूँ रज के मैं,
1: वाह वाह क्या कहने क्या कहने,
0: पड़ा रहूं मैं सोफा पे दिन हफ्तों में बदले परवा नहीं,
1: वाह वाह वाह
0: मुझे प्यार है मेरे लेजीपन से, पीठ में रज के पक्का हूँ, लेजी बहुत मैं रज के,
1: वाह
0: करता नहीं मैं वर्क कोई।
1: वाह वाह क्या कहने क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब।
0: आखिरी एक नज़्म दा एक शेर हो जाए तो फिर
1: जी जी जी बहुत मौका देने से। जी जी बहुत शुक्रिया।
0: अज साइकिल सिखनी पै गई है, रंग उड़िया उड़िया जांदा मेरा,
1: वाह वाह
0: मेरा वड्डा भरा पिया सिखांदा अजे, तैनू झिड़कां पैंदियां बेहिसाब,
1: वाह
0: साइकिल सिखनी पै गई ये, रंग उड़िया उड़िया जांदा मेरा।
1: आहा क्या कहने,
0: टंकी में चलाई अरसे तक,
1: वाह
0: गद्दी डंडे बह के,
1: वाह
0: डंडे बह के चलाई ये,
1: आहा
0: गद्दी बह के सिखना वा, पर साइकिल नू पाई जान मेरे,
1: वाह
0: साइकिल सिखनी पै गई ये, रंग उड़िया उड़िया जांदा मेरा।
1: आए हाय हाय क्या कहने हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त और क्या कहें शान डार साहब, बड़ी खूबसूरत इंसान है, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी जो आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं भाई हैं दोस्त हैं, और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और थोड़ी देर के बाद इनके साथ हम मुलाकात करेंगे हवा के दोस्त में, उनको यहाँ पर क्योंकि हम जो हमारे चाहने वाले हैं वो आगे हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त, यहाँ पर उनको वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और वेलकम कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, और ये हैं हमारे मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह तुसा नहीं आई बड़ी फरमाशा है ना, गाने गाओ तो आज दो त्रै त्रै फ्रेश फरमाशा होगी नहीं गाने गाने नहीं ठीक है ना, तो हूँ तुसा अपना बदमाश करी क्यों बदमाश करी क्यों
2: सुनो ना।
1: हाँ जी जी
2: मारिया सुनो ना।
1: अच्छा
2: जी दो तीन दिन हो पहले।
1: हाँ बस इतना ना हो। हाँ मैं बस जी जी जी सही कह सही कह
2: सॉरी
1: जरूरी है जरूरी है अदब अदाब बड़ा ही जरूरी है और अदब अदाब हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इंतजार करें और थोड़ी देर के बाद हम आपके साथ हम कलाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हैं, और हम क्या करेंगे थोड़ी जी इंफॉर्मेशन देंगे आपको, और क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ज़रूरी क्यों है कि आपको पता है कि सनराइज रेडियो गेन बिगर ऑन अ बेटर, आपको पता है ऑन योर लिसनिंग सन रेडियो ऑन 100.6 एफएम 103.2 एफएम क्रॉस द वेस्ट योर्कशायर डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड कीथली इल्कली स्किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकशायर ब्लैकबर्न बर्ल डेवन नेल्सन अकिंटन मिल्टन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है नो फॉरगेट www.sunriseradio.fm और www.sunrise.radio, और इतनी खूबसूरत जो हमारे हस्ती है हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई से मुझे कॉल आ रही है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी खुश नसीबी है कि स्पेन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, वही होए होए सदके जावा कुर्बान जावा, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेन में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बार्सिलोना में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि न्यूज़ ब्रेक करनी है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, अल्लाह खैर ही करे, और वही बात हो रही है क्या कहेंगे यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शकील साहब आप भी तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, शवाक रसूल साहब आपका भी इंतज़ार है, अब्दुल कयूम साहब आपका भी इंतज़ार, चौधरी रुखसार भाई आपका भी इंतज़ार है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा आपका हमारा साथ देने। कीप इट लॉक्ड
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News. Centre at 10. Sir Keir Starmer's laid out his government's plans in Parliament, despite plots by members of his party to oust him. Health Secretary Wes Streeting's understood to be planning to resign tomorrow and trigger a leadership election. The Prime Minister insists he'll fight on and try to laugh off plots in the Commons. Tory leader Kemi Badenoch says the King's speech against a backdrop of turmoil was preposterous.
5: The whole thing is totally illogical. Either Labour MPs agree with this agenda, in which case, why are they trying to get rid of the Prime Minister? Or they don't agree with this agenda, in which case, what on earth are we all doing here?
4: Health officials say the first six people from a hantavirus-hit cruise ship are being allowed to leave their isolation at a Merseyside hospital. The UK HSA says they'll complete their 45-day isolation period at home. Police have recovered the bodies of three women from the sea near Brighton Pier. They're working to establish what happened in the early hours of this morning. Nigel Farage is facing an investigation by the Common Pleas watchdog over a £5 million gift. The Reform leader claims he didn't have to declare the cash from a crypto billionaire because it wasn't a political donation. Donald Trump could use his state visit to China to urge President Xi Jinping to put pressure on Iran. The US president's arrived in Beijing alongside business bosses. The Scottish Premiership title race will go down to the final day after a late drama at Fir Park. Celtic scored a last-minute penalty to beat Motherwell 3-2.
6: Kelechi Iheanacho up against Callum Ward to cut the gap between Celtic and Hearts as we head towards the final day. How is your nerve? Kelechi Iheanacho!
4: Hearts beat Falkirk 3-0 at Tynecastle, so they have a one-point lead at the top before they play each other on Saturday. And Manchester City boosted their Premier League title hopes with a comfortable 3-0 victory against Crystal Palace. They are 2 points behind leaders Arsenal with two games left to play. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
7: Sunrise Radio. Trendsetters in Asian broadcasting. We lead. Others follow. Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio, and that was a hit of the hour. I've been enjoying it. Short and sweet track.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunrise Radio clock, it's 10:05 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked and keep it locked down with the power. It's gone. Yeah, we live call us today. Our saath de rahe hain, hamare mohtaram, hamare bhai, hamare dost, jitni ki main tareef karun kam hai. Nadeem Mansoor sir, hamare saath de rahe hain, aur welcome ji and Khush Ahmedid yahan pe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपने गीत गुनगुनाया मेरे भाई और पिछले आवर में, बड़ा ही कमाल का और समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा हट के गीत था और सब ने एंजॉय किया. फर्दन फर्दन सब ने अपने शुक्रिया अदा किया है और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपका. बहुत बहुत
2: शुक्रिया.
0: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने. और क्या लिखे जी,
2: अभी है माया है, गीत है,
0: हाय हाय हाय, माया और गीत भी है. जी क्या कहने,
2: चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा.
0: हाय हाय हाय, क्या कहने.
2: तो ये आपकी नजर और सबकी नजर है.
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नादिश.
2: चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा.
0: हाय हाय.
2: चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा. निकाजे या दिल माड़ा तोड़ के न जा. ओए चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के न जा. निकाजे या दिल माड़ा तोड़ के न जा.
0: वाह

के ना जा निकाजे या दिल माड़ा तोड़ के ना जा ओ चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा निकाजे

रहता संग संग वे रहता संग संग वे प्यार वाली तांग चन्ना छोड़ के न जा वो प्यार।

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह कमालिका जी मेरे भाई, बहुत खूबसूरत है, बहुत मैया और क्या कहेंगे वाले, इसके बारे में जितनी भी तारीफ करूं कम है मेरे भाई। और कमालिका देते हैं जब भी आ रहे हैं माशाल्लाह, और शुक्र करते हैं प्रोग्राम में, बड़ा ही अच्छा लगता है। और कमालिका जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल तो नहीं करता है कहीं चले जाएँ, तुझे जा रहे हो क्या
0: मसला,
1: जा रहे हो ना जाओ, निका निका दिल जाना कहें ना ना ख़राब करो, ठीक है, बड़ी मेहरबानी आप आए और बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, जाकर बहुत वाह वाह क्या कहने जी, क्या कहने, और बहुत अच्छा लगा हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और देखो कौन कौन हमारी महफिल में आ रहा है, खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने, और अच्छा लग रहा है आप ही आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे निक्की जी ब्रेक होगी, उससे पहले हमने दोबारा टाइम चेक करने, क्योंकि कोई खर्चा नहीं होता है टाइम करने के, और दोबारा कर लेते कोई बात नहीं।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: The time in the studio is 12 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Sunrise
3: Music. कुल्लो नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: राइट, वेलकम बैक, योर लिसनर सनराइज। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, क्योंकि इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी, इसमें कोई शक है ही नहीं है। और यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर,
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आए और बहार आ गई है, क्या कहने आपकी, जितनी भी आपकी मैं तारीफ करूँ कम है। जो आप गीत लेके आ रहे हैं और जो गीत आपने गुनगुनाया लास्ट प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में, ओए होए कमाल हो गया। आज भी वो हमारे जो डॉक्टर साहब है वो गुफ्तगू कर रहे थे, माशाल्लाह आपने तारीफ, उन्होंने तारीफ की आपकी, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। जी
0: बहुत शुक्रिया उनका, डॉक्टर साहब का जी, आप सबका शुक्रिया
1: जी,
0: आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप इतना इज्जत एहतराम देते हैं जनाब,
1: माशाल्लाह।
0: और जो दोस्त बहने जो सुनते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से मैं उनको आदाब पेश करता हूँ,
1: माशाल्लाह आदाब जी।
0: जब कोई प्यार से बुलाएगा,
1: हाय,
0: जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा
1: वाह
0: तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई

एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई तेरे

तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से

0: वाह
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू,
0: बहुत ही खूब शुक्रिया, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: थैंक यू।
0: यहाँ पे गाना नहीं है, मैं गाना आपके लिए पेश कर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल है और क्या कहने, और मेहंदी अक्षर की आवाज और आपकी आवाज, होए होए होए सदके जावा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल,
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बाहर आ गए, आपने महफिल लूट लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम इश्फाक रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, थैंक यू वेरी मच, और हमें अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने गुनगुनाया और मेहंदी अक्षर साहब की आवाज़ में, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और भाई शुक्रान साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई कॉल नहीं लेनी है क्योंकि मैंने अजान पेश करनी है यहाँ पर, और क्योंकि ईशा की अजान जो ना बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए और हमारे भी लिए ज़रूरी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम जो ना आपको पता है ना कि हम, मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम के साथ सब कुछ जो ना टाइम के साथ चलें, और यहाँ पर अजान भी टाइम के साथ पेश करूँ, अभी एक मिनट रह गया है, और यहां पे हमने क्या करना है, इतनी देर में देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं हमें।

ये तो इंटीमेशन क्या कहते हैं कि ये जो म्यूज़िक चल रही है और यहाँ पे, और क्योंकि ये आगे से नहीं चल रही है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है और किसी और रोज़ चेक करेंगे इसको, क्या स्टोरी है, क्या माजरा, क्या स्टोरी क्या है और ये क्यों नहीं चल रही है। एनी वे नॉट टू वरी, और यहाँ पर हमने करना है कि अजान पेश करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, जो भी मेरे बहन भाई साथी दोस्त बाब अजीज़ है, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है अजान ब्रेक का ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में, और यहाँ पर हमने अजान पेश करनी है। कीप इट लॉक्ड टू द सनराइज रेडियो।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Right, welcome back and listening. You're listening to Radio 103.2 FM. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त और बाब हैं, अजीज़ हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और भाई शुक्रान थोड़ा आप इंतज़ार कर लें. और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे चौधरी फ़रियाज़ साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं और उनका भी मैं शुक्रगुजार ममनून उनका. और यहाँ पर मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे चौधरी फ़रियाज़ साहब का. और वो कह रहे हैं कि पहले भाई शुक्रान को लेके जाएँ और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई शुक्रान. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और बाहर आ गए. हमारे चौधरी फ़रियाज़ साहब कह रहे हैं कि आपको पहले लेके जाएं, वैसे उनकी ट्रेन थी. तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. आपके कैसी थी तबीयत? ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: क्या कहने मेरे भाई का
1: शेर है. एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ.
0: जी जी जी.
1: कहता है कि मेरा फर्दा ख्वाब है था.
0: होय होय.
1: फर्दा कहते हैं मुस्तकबिल को.
0: हाँ जी जी जी जी.
1: कहते हैं मेरा फर्दा ख्वाब है सारा, मेरा माजी अजाब है सारा.
0: आए हाय क्या कहने.
1: मेरे माजी में एक उजाला है.
0: वाह.
1: तेरी यादों का जो हवाला.
0: आए हाय हाय क्या कहने क्या कहने.
1: मेरे माजी में एक उजाला है, तेरी यादों का जो हवाला है.
0: वाह वाह.
1: मेरे रब आज इस पर राजी हो.
0: माशाल्लाह क्या कहने.
1: मेरा फर्दा भी मेरा माजी हो.
0: आए हाय हाय हाय. क्या कहने मेरे भाई क्या कहने. कमाल ही कर दिए मेरे. जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं मेरे भाई. क्या कहने. वाह.
1: और गाना जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ. गजल है.
0: जी जी जी जी. अच्छा
1: जगजीत सिंह की.
0: जी जी.
1: चिट्ठी न कोई संदेह.
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय. क्या कहने.

0: गई,
1: हाय हाय हाय हाय,
0: एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी,
1: आए।
0: जाते जाते तुमने आवाज तो दी हो कि
1: हाय हाय हाय हाय हाय,
0: एक आह भरी होगी,
1: हाय हाय
0: हमने न सुनी होगी,
1: वाह वाह,
0: जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी,
1: वाह वाह वाह,
0: हर वक्त यही है हम,
1: वाह,
0: उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश।

0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत आपकी आवाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है मेरे भाई। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, कमाल कर देते हैं मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे शुक्रान भाई, वन एंड ओनली वन शुक्रान भाई, शुक्रिया अदा करते हैं इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, कमाल कर दिया इन्होंने, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, और
2: मेरे भाई
1: हमारे चौधरी फरियाज साहब, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह चौधरी साहब,
3: बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह,
1: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे मोहतरम, मेरे दिल अजीज, मेरे मोहसिन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक से, ठीक है आपकी?
3: जी मेरे भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाए?
1: अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र, मेरे मौलाना करम करम करम, आप आ गए, और हमें क्या चाहिए मेरे भाई, क्या चाहिए हमें, मुझे बताएं।
3: मेहरबानी मेहरबानी,
1: और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने
3: परवेज भाई,
1: जी जी जी
3: जी बिस्मिल्लाह,
1: आपने मौका दिया
3: हमारे, ख्याल है कि मैं उन रस्ते से स्टे ना करा, भले भले टूरी प्यार से चंगा
1: भले मैं टूरी बहुत चंगा है, कुछ जा रही हो कि कुछ जा रहा हूँ, कुछ भले भाव में कि कुछ जा
3: रही हूँ, पता है क्या हो रहा है
1: जी,
3: पीछे भी किसी ना ख्याल रखना हो रहा
1: ना, ना ठीक है ठीक है, फिर मुद्दे पर आ जाओ, फिर मुद्दे पर आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो, फिर मुद्दे पर आ जाओ,
3: जी जी
1: जी जी,
3: मैं तो सारा टाइम ना जया करना हमारा,
1: जी जी
3: जी गल
1: है, हाय हाय हाय, सदके जाऊं सदके जाऊं, बुश रानी हो
3: आज माशाल्लाह, तो सारे महफिल जनाब बड़ी खूबसूरत है,
1: जी जी,
3: दिल से करना सारे ना, ना कि ना ते सारे ने तारीफ करना
1: जी,
3: पर अकीका बाजी तो की नहीं थे, हूं तक जितने मेहमान आए ना
1: जी जी,
3: सब काबिले तारीफ,
1: हाय हाय,
3: और बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज ना लाए,
1: वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने,
3: क्यों ना लाए, मैं मेरे बाजी और जब महफिल नहीं इंतजार करने ने ना, उतनी महफिल जड़ी ना,
1: वाह
3: बड़ी खूबसूरत शिरम हो जानी है,
1: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया
3: जनाब, सब तो पहले मेरी बाजी अतीका बाजी ने मेरा बहुत बहुत सलाम,
1: वालेकुम सलाम,
3: और उन्होंने लाल नशीन जी ने उन्होंने बहुत बहुत सलाम और उन्होंने शुक्रिया
1: जी,
3: सिमी जी ने, गजाला बाजी ने, उमर कुम जी ने, सीमा जी ने
1: जी,
3: शाह परी जी ने, जुलेखा जी ने, सतारा जी ने
1: जी,
3: और भाभी साहिबा ने, गिदड़ भाई भी आज कमाल की है,
1: कमाल ही कर दी, क्या हाल है, वाह कमाल
3: जी
1: जी,
3: फरजाना जी ने और सहमा जी, तुम बहुत बहुत सलाम
1: जी,
3: सभा जी
1: जी,
3: सभा अरजू जी और रुखसाना
1: जी
3: साहिबा, सबको मेरा सलाम
1: जी,
3: और मोहतरम अमर भाई ने, महबूब भलाई साहब ने, मुदस्सर साहब ने
1: जी,
3: अजीत सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले ने
1: जी,
3: और शकील साहब ने, हीरा साहब ने, वाजिद भाई ने, वाजिद भाई के वास्ते बहुत सारियां दुआवां, अल्लाह पाक
1: उनके
3: पता फरमा,
1: आमीन आमीन,
3: सारे चंगे भाई ने, सारे नाल उन्होंने बड़ा सलूक है और सावन है और हमेशा सारे याद कर रहे
1: जी, हमेशा जी जी,
3: अयूब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, अब्दुल कजूम भाई ने
1: जी,
3: नवीद राणा साहब ने, पिछले हफ्ते नवीद राणा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत शायरी की थी, यकीन करो
1: जी
3: मेरे दिल भी आया कि मैं उन्होंने जनाब तारिक अकबर साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, सारे दोस्त
1: जी,
3: चौधरी आसम रियासत साहब ने, डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब ने, एम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने जरा आखिर माइया सुनाया, वाह जी दिल करना मैं उन्होंने ना ही
1: माइया रखी,
3: मेरा दिल करना मैं उन्होंने ना ही माइया
1: माइया रखी, क्या कहने, वाह
3: जी जी, जनाब सारे दोस्त राजा वकार साहब ने, राजा दुलकर मैम साहब ने
1: जी,
3: चौधरी मनीर सैन ने, और जफर अली हीरो साहब ने
1: जी,
3: महमूद साहब ने, राजा शोएब साहब ने
1: जी,
3: और भी जितने मेरे दोस्त ने, सब उन्होंने मेरा बहुत बहुत सलाम,
1: वालेकुम अस्सलाम,
3: शायरी शुरू करा जनाब
1: जी जी,
3: लिखने ने के जे तू चाहना है माफ कसूर हो, ये तू चाहना है
1: जी,
3: माफ कसूर होवन,
1: वाह
3: ओए लफ्ज़ तौबा पका ले चंगा रहसे,
1: वाह जी वाह, क्या कहने,
3: कद फेंक शैतान नु बाहर अंदरों, ओए मन विच माया वसा ले चंगा रहसे,
1: वाह जी वाह,
3: देख के वास्ता शाह कुनैन वाला रूठा होया मना ले चंगा रहसे,
1: वाह
3: चार दिन अजाती दे साई आबद नेक अमल कमाल है चंगा रहसे,
1: चंगा रहसे, वाह जी वाह, क्या कहने,
3: बड़ी खूबसूरत शायरी
1: जी,
3: परवेज भाई
1: जी जी
3: उस किताब जो तुसा नाल पिछले हफ्ते से मैं शुरू की थी है
1: जी जी
3: जिस किताब ने बारे में तुसा नाल
1: चर्चे हो रहे पूरे यूके रोला पे गया क्या है पूरे यूके रोला पे
3: सीधा सीधा सारे शायरा ने शायरी है थोड़ी थोड़ी उन्होंने शायरी पढ़िया करता क्योंकि उन्होंने ये बड़िया मेहनत समझे
1: वाकई कोई शक नहीं
3: जिस बंदे किताब छापा चढ़ाई है थोड़े जनाब रखड़ी साहब ने उन्होंने भी बड़ी मेहनत है लिहाजा उन्होंने मेहनत का फल मिलना चाहिए उन्होंने
1: जी जी जी
3: आख्या फिर दिन डल के आई वेला डिग्री दा
1: वाह
3: दिन डल के आई वेला डिग्री दा संभल जा इंसान ते चंगा रहसे
1: वाह
3: जालिम शाम अंधेरी तू पहले पहले राजी कर ले जानान ते
1: चंगा रहसे वाह वाह वाह
3: अपने अंदर लब जिस दी तलाश तेनो ना फिर लबदा जहान ते चंगा रहसे
1: वाह
3: इस तो बाद कोई आबद रहबर नहीं है कर ले याद कुरान ते
1: चंगा रहसे माशाल्लाह क्या कहने
3: ये जनाब ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस शेर च इस्तेमाल किया
1: जी जी
3: जिसने ने के कयामत वाले दिन
1: जी जी
3: कुरान पाक ने बड़ी कोई सिफारिश ना हो सी
1: माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी
3: इस तो बाद
1: जी
3: कोई आबद रहबर नहीं है कर ले याद कुरान ते चंगा रहसे
1: वाह वाह क्या कहने
3: ते मजाज ने रंग
1: जी
3: जिसने ने के बाद में मुखालिफ ना कर मेरे नाल मस्ती बाद में मुखालिफ ना कर मेरे नाल मस्ती ला दे कश्ती किनारे ना रोक मैनू
1: वाह वाह
3: मैनू इलम है मेरे जरान वास्ते मुंतजिर ने शरारे ना रोक मैनू
1: वाह जी वाह क्या कहने
3: अज दरे हबीब तक जाना इस तो इस दर्दा ने मारे ना रोक मैनू आबद लीला गरीब नु जान दे अज राजी करने प्यारे ना रोक मैनू
1: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब
3: मैं आशिक नहीं हौसला पस्त मेरा मैं आशिक मैं आशिक नहीं हौसला पस्त मेरा बाज आ जा तूफाना ना रोक मैनू अमर कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकदा रस्ता छड़ ना दाना ना रोक मैनू
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब
3: इन अखियां वसल दिया तसियां ने इन अखियां वसल दिया तसियां ने दर्शन यार दा पाना ना रोक मैनू साईं आबद नु जान दे भला होवे रुठा मनाना ना रोक
1: मैनू वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब
3: अखिया तेरे जान तू बाद में कह दसा तेरे जान तू बाद में कह दसा मेरे नाल क्या जालम जहाने कीती रिश्तेदार करीबी सब साथ छड़ के दाड़ी सितम जरीफी जमाने कीती
1: वाह जी वाह क्या कहने
3: जिस ते मान तरान सी चला गया जिस ते मान तरान सी हो चला गया छाती चलनी रकीबा ने ताने कीती मेरे नाल हुई और साईं आबद जड़ी सती नाल पुन्नो उमर
1: वाकराने
3: की थी
1: वाह जी वाह क्या कहने
3: तेरे जान तो बाद में क्या दसा मेरे नाल क्या जालम जखाने की थी रिश्तेदार करीबी सब साथ छड़ के वो दादी सितम जरीफी जमाने की थी
1: वाह जी वाह क्या कहने
3: जिसके मान तरान सी हो चला गया साथी चलने रकीबा ने ताने की थी मेरे नाल हुई और साईं आबद जड़ी सती नाल पुन्नो मकराने की थी
1: बहुत खूब बहुत खूब
3: आखिया फिर शक ना कर सीना चीर तक ले शक ना कर सीना चीर तक ले रखिया दिल विच सांब प्यार दिल दा तू आवे ना आवे रजा तेरी खुला तेरे रे दरो दीवार दिल दा
1: वाह क्या कहने
3: तू आवे ना आवे रजा तेरी तेरे लिए खुला तेरे लिए दरो दीवार दिल दा जालम मार जदाई ने तीर दूरो जालम मार जदाई ने तीर दूरो लुट लेंदा है चैन करार दिल दा आज़कार इंसाफ ते दास आपे किधर जाए आबद बीमार दिल दा
1: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
3: आखिरी शेर आखिया तड़प तड़प आसीना ले मर मिटना तड़प तड़प आसीना ले मर मिटना शायद एक और सी रस्म रवाज दिल दा तेरे यार ते रह जांदा नकेल पाके ने कोई वास्ता नाल समाज दिल दा
1: वाह क्या कहने क्या कहने
3: तेरे यार ते ले जांदा नकेल पाके ने कोई वास्ता नाल समाज दिल दा तेरी याद विच तड़कदा दिने रात
1: हाय हाय क्या
3: तेरी याद विच तड़कदा
1: दिने रात
3: और कुछ भी नहीं है काम काज दिल दा
1: वाह
3: आबद कारण तू मेरी बीमारियां दा
1: वाह
3: आबद कारण तू मेरियां बीमारियां दा तू ये दस तबीबा इलाज दिल दा
1: हाय हाय क्या कहने क्या कहने वाह
3: परवेज भाई जी ने वफा की थी फिर
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर बड़ी मेहरबानी बड़ी शुक्रिया नवादिश तो आए और बहार आ गई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का
3: एक दफा फिर तुसने पूरी महफिल के सलाम और आदाब
1: जी
3: और जेडे ਨਵਾਬ ਸੰਗੀਤ ਮਿੱਠੀ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲੀ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ
1: ਜੀ
3: ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋ ਜਾਸ਼ਕੋ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਐਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ
3: ਬੜੀ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੀਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ
1: ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त चौधरी फरियाज साहब उस्तादों के उस्ताद चौधरी फरियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगा कि आपने हमें याद कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हमारे मुर्शिद आ गए हैं उनको यहाँ पे वेलकम कहेंगे जिए कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी तबीयत है मेरे भाई की माशाल्लाह माशाल्लाह ये माशाल्लाह ये सुन के बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह और आपका हम इंतजार था कि आप आएंगे माशाल्लाह और आपके चाहने वाले आपको हमेशा सलाम पेश करते हैं जी
0: ये प्रॉब्लम आपने हम तो यहीं होते
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया जी
0: सुनने वालों को
1: वालेकुम अस्सलाम
0: अगर नाम लिया तो टाइम बहुत कम है
1: जी
0: तो फिर मैंने एक गजल छोटी सी लाया हूँ आप महफिल के लिए
1: जी जी
0: ये नजीर जालनवी है कोई नाम है
1: नजीर जालनवी जी जी जी जी अरशाद
0: वो कहते हैं खुले जो दिल के हैं वो बहुत साफ करते हैं
1: हाय हाय क्या कहने
0: आप जैसे जो
1: माशाल्लाह क्या कहने वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह
0: खुले जो दिल के हैं वो बहुत साफ
1: करते हैं वाह वाह जी जी
0: वही लोग एतराफ करते हैं
1: हाय हाय क्या कहने
0: शुक्रिया
1: वाह
0: जरा सी बात पे आबाब होते हैं बरहम
1: हाँ
0: जरा सी बात पे आबाब होते हैं
1: बरहम वाह
0: भी खताएं भी दुश्मन माफ करते
1: हैं वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह
0: वो इत्तेहाद की करते हैं बात किस्मों से
1: वाह
0: वो इत्तेहाद की करते हैं बात किस्मों से
1: वाह
0: जो पैदा कौम में खुद इख्तलाफ करते हैं
1: वाह वाह क्या कहने
0: जिन्हें है आज भी दावा चमन परस्ती का वो साजिशें भी चमन के खिलाफ करते
1: हैं वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने
0: बड़ा सबूत है उनकी बुलंद जरफी का बड़ा सबूत है उनकी बुलंद जरफी का खता जो करके अगर एतराफ करते हैं
1: वाह क्या कहने क्या कहने
0: जुनू में फर्ज नहीं जनू में फर्ज नहीं भूले तेरे दीवाने
1: वाह
0: परी में नाज का तेरी तवाफ
1: करते हैं वाह वाह वाह वाह क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब
0: करते हैं
1: जी जी
0: नजर अना का नशा इस कदर है लोगों में
1: वाह
0: अना का नशा इस कदर है लोगों में के अरफे हक से भी वो इनहराफ करते
1: हैं वाह जी वाह कमाल कर दिए कमाल अरशाद जी मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं क्यों कर जी अरशाद अरशाद अरशाद
0: कमर है लिखने वाले
1: जी जी
0: वो कहते हैं बोल उठने पे सवालात पे पाबंदी है
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: बोल उठने पे सवालात पे पाबंदी
1: है वाह
0: मेरे देश में हर बात पे पाबंदी है
1: बेशक ऐसा ही हो रहा है ऐसा ही है ऐसा ही
0: अदलो इंसाफ के मियार अजब हैं उसके
1: वाह
0: जुल्म सेना है शिकायत पे पाबंदी
1: है वाह वाह वाह वा, क्या कहने वाह
0: जीतने पर भी लगा रखी है कदगन उसने
1: वाह जी वाह क्या कहने
0: ये भी कहता है यहाँ मात पे पाबंदी है
1: वाह वाह वाह वाह
0: वा। खुश्क साली का असर क्यों है यहाँ चेहरों पर?
1: वाह,
0: खुश्क साली का असर क्यों है यहाँ चेहरों पर?
1: वाह,
0: क्या यहाँ प्यार की बरसात पे पाबंदी
1: है? आय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। वाह,
0: सारी बस्ती को बनाया है गधा घर उसने, सारी बस्ती को बनाया है घर उसने, और कहता है कि खैरात पाबंदी है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: सितमगर ने करके मजलूमों को पाबंदे सलासिल, सितमगर ने करके मजलूमों को पाबंदे सलासिल, हुक्म देता है कि मुलाकात पाबंदी है।
1: आए हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। वाह,
0: आखिरी शेर कहते हैं
1: जी जी।
0: फखर भी हमको उसी अर्ज़े वतन पे है कमर,
1: हाय हाय हाय।
0: फखर भी हमको उसी अर्ज़े वतन पे है कमर,
1: वाह,
0: जहाँ पर इज़हारे ख्यालात पाबंदी है।
1: आई हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
0: वाह जवेल सर, तो बड़ी मेहरबानी
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महफ़िल लूट ली, इतने खूबसूरत शायरी की आपने, हमेशा ही करते हैं और आज भी की है, और महफ़िल आपने लूट ली, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया नवादिश, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, हमारा तो काम हो गया माशाल्लाह, क्या कहने। हमारे शकील साहब हमारे मुर्शिद आए और कमाल की शायरी की, इन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे धमाका होगा, और हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे अब्दुल कयूम साहब कहाँ पे हैं, हमारे चौधरी रुखसार साहब कहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: The right time in the studio is 43 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good evening to you all. Aur bahut shukriya aapka bhi. Aur yahan pe humne chhoti si break karenge. Break ke foran baad yahan pe dhamaka hoga aur khoobsurat dhamaka hoga. Kya kehne inka bhi. Inka main shukr guzar hoon, mamnoon unka ki inhone time nikal ke aa rahe hain. Bahut shukriya aap sabka.
4: کلو نفسین ذائقۃ الموت
5: مسلم فیونرل سروس میں کفن دفن پھولوں کا انتظام اسلامی شریعت کے عین مطابق غسل میت کے لیے عورت اور مرد موجود ہیں ٹاپ کوالٹی گرینڈڈ ماربل کے ہیڈ سٹونز اور فل قبر کو 30 سال کی گارنٹی کے ساتھ بنوانے کے لیے بھی مسلم فیونرل سروس کا نام یاد رکھیں مسلم فیونرل سروس 4 ڈارفیلڈ سٹریٹ آف لملینڈ بریڈفورڈ 1 ٹیلی فون 7230300 بریڈفورڈ 7230300
6: Looking for your dream home in Bradford?
7: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
6: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
7: Bellevue Residences.
6: Luxury, space and style.
7: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप सबका भी शुक्रिया करता हूँ, और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है वो दोबारा मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रही मोहतरमा, और हमारी पहली दफ़ा उन्होंने हमें प्रोग्राम में शिरकत कर ली है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस दिस यंग लेडी हैज़, सोनिया जी हमारा साथ दे रहे हैं, और ऑल द वे फ्रॉम डरम, और क्या कहने जी, आई एम वेरी लकी टू हैव इन माय प्रोग्राम एंड इट्स ऑलवे ऑनर टू हैव यू एंड यू आर ऑन हवा के दोष में है एंड यू आर एयरवेव्स वेल, और ये आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ, वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सच अमेजिंग माशाल्लाह इनकी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, खूबसूरत इनके गीत होते हैं, और माशाल्लाह क्या कहने, जितनी भी इनके इनकी मैं तारीफ करूं कम है। वेलकम सोनिया जी, हाउ आर यू?
8: I'm very fine. Thank you so much. It's my pleasure to be here.
1: Mashallah, mashallah, mashallah. It's always an honor to have you. I know you've been trying for last couple of weeks and finally you got in, mashallah, aur bahut acha laga. And thank you very much for waiting for the for waiting as well. And thank you very much for being patient as well. And what have you got for us today? What have you got? What track have you got for us?
8: I can sing any song for you. If there are any demands also, I can fulfill.
1: You can go ahead with any track you like. In a future program, people will be listening in as well, and they will asking for what track to sing in future program. And meanwhile, you can do any track that you like. If you have got anything special that you want to do, or if you want to introduce yourself, that will be really appreciated as well. You are on the airwaves, everybody listening to you as well. That's such amazing, because everybody tuned in.
8: Okay. Very very good evening. Namaskar sabko. Main bahut khush hu aaj
1: ji
8: FM pe aayi hu pehli baar.
1: Ji ji mashallah.
8: To ji bahut mera bachpan se sapna tha
1: ji
8: ki main hamesha FM mein kaam karu aur wahin par gaane gaun.
1: Gaane gaun. Wah kya kehne, kya kehne, kya kehne. Wah ji wah, kya kehne. That'll be very nice, you know, mashallah. Or acha, and you got an amazing voice as well. I've heard a lot about you, everybody talking about you, everybody saying good things about you, and we are eagerly waiting to hear your beautiful track that you're going to do for us.
8: Okay. Main hamesha se Shahrukh Khan ka ye gana लाइक करती हूँ, बिकॉज वो मेरा ड्रीम बॉय रहा है शुरू से.
1: वाह जी वाह, क्या कहने. एवरीबॉडी लाइक शाहरुख खान. आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान एज वेल. सो गो अहेड. जी
8: ओके, तो मैं उन्हीं का गाना अभी गा लेती हूँ.
1: जी जी
8: ठीक है.
1: जी
8: जी जी ओके. सीधा डायरेक्टली आई एम जस्ट सिंगिंग. ओके
1: ओके
8: या जी जी.

0: सनम।
1: वाह।
0: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: वाह।
0: प्यार होता है दी

0: वाह,
1: प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम,
0: ब्यूटीफुल,
1: तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम।

0: सब कुछ तेरा, जा मेरी सांसें तेरी,
1: वाओ,
0: मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
1: वाओ वाओ, क्या कहने क्या कहने, वाओ,
0: थैंक यू सो मच,
1: दैट वाज माइंड ब्लोइंग, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, एंड यू नो व्हाट, इट हैज बीन सच अ अमेजिंग सॉन्ग यू हैव डन, एंड द वॉइस इज अमेजिंग एज वेल, एंड इफ यू हैव गॉट अनदर ट्रैक फॉर मी, एंड दैट विल बी रियली ग्रेटफुल बिफोर आई एंड माय प्रोग्राम टुडे दिस इवनिंग, एंड बिकॉज यू गॉट सच अमेजिंग वॉइस, यू नो व्हाट, द लिसनर्स आर जॉइनिंग इन, एंड लिसनर्स आर लिसनिंग एज वेल, एंड माशाल्लाह दे फ्लशिंग एज वेल, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल एज वेल, एंड गो अहेड जी।
0: ओके, थैंक यू सो मच, आपकी कोई डिमांड है तो बताइए, और आई कैन सिंग एनी
1: सॉन्ग, इफ यू गो व्हिचएवर ट्रैक यू वांट टू, बिकॉज़ आई हैव गॉट सो मेनी ट्रैक टू रिमेंबर एज वेल, एंड यू मे बी दैट इफ आई टेल यू समथिंग यू माइट बी नॉट रेडी, सो एनीवे व्हिचएवर ट्रैक यू गो एंड यू कैन गो अहेड विद इट, या नो प्रॉब्लम, ठीक है ना।
0: ओके, और इस दिल में
1: वाह
0: क्या रखा,
1: क्या कहने क्या कहने क्या कहने,
0: क्या रखा है,
1: वाह,
0: तेरा ही प्यार छुपा रखा है,
1: वाह,
0: तेरा ही प्यार छुपा रखा है,
1: वाह वाह,
0: चीर के देखे दिल मेरा तो,
1: वाह,
0: चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है,
1: वाओ,
0: तेरा ही नाम लिखा रखा है,
1: ब्यूटीफुल,
0: प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से,
1: वाह,
0: प्यार क्या होता है ये तूने समझाया,
1: वाओ,
0: मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जनो जाने कैसा जवा दिल पे छाया, दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, दीवानों ने इस दुनिया में प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है,
1: ब्यूटीफुल, वाओ,
0: थैंक यू सो मच,
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ, यू नो व्हाट, सच अ अमेजिंग वॉइस यू हैव, and thank you very much once again to give me a little time for me, inshallah I will be eagerly waiting for you on Sunday evening between hours of 9 and 11, and we will be hearing the beautiful track from you as well, and thank you very much once again that you have given valuable time, and bahut bahut shukriya, apna khayal rakhiye aur dua mein yaad rakhiye, bahut bahut shukriya once again, bahut bahut shukriya aapka, allah hafiz,
0: allah hafiz, good night everyone,
1: good night, good night, bahut bahut shukriya, thank you very much, aur ye thi Sunny ji, bahut bahut shukriya, aur Geeta ji, bahut bahut shukriya aapka bhi, aur yahan pe hamara mohtaram, hamare bhai, hamare dost, और जितने की मैं तारीफ करूं कम है, ये है हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज हैं, और आज हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है क्योंकि हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त रुखसार भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, वेलकम जी एंड खुश आमदीद, और आज हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم علی جناب عزت ماں صاحب صدر گرامی قدر ہر دل کی شخصیت میرے چیمپئن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دیکھو مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھو میں نے پروگرام کیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہوا صاحب آئے ماشاءاللہ آپ کی آواز سننے کے لیے میں بےتاب تھا کہ آپ آئیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے ہمارے بھی اب ہم بھی آپ کی کریں گے دیکھو یہ کام ہو گیا ہمارا माशाल्लाह क्या कहने वाह
2: सर आप हमारे मुर्शिद हैं मैं तो आपका मरीद हूँ
1: चलो अभी टाइम ही नहीं है तो मैं इसका जवाब किसी और प्रोग्राम में दूंगा आपको क्या करें
2: नहीं
1: आप अभी टाइम कम है ये ना हो कि न्यूज लग जाए तो वहां में मसला हो जाएगा मेरे लिए ठीक है ना
2: नहीं अभी अभी ना मैं तो यहाँ आपका मरीद हूँ तो यहाँ रन मरीद हूँ
1: इसको रहने देते हैं, आप हमें सुने बताएं कि ये क्या लेके आए हमारे लिए, ये ना हो कि हम बातें करते रहे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है जी
2: सर, मुझे पता है क्या, तो मेरा ख्याल आखिरी टाइम रहा तो मैं सिर्फ दवाइयां कलमात ही लेकर आया।
1: ठीक है, ठीक है जी, आप हम सुनाएं, और क्योंकि ये ना हो कि हम बातें करते रहें और यहाँ पे आगे पीछे से न्यूज लग जाए तो हम यहाँ पे बातें करते रहें तो वो अच्छा नहीं रहेगा। क्या
2: आपसे बात करने का शरफ हासिल हो गया, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत,
1: माशाल्लाह
2: मेरे लिए यही काफी है कि माशाल्लाह मुझसे अच्छे और इतने बेहतर और इतने खूबसूरत आते हैं माशाल्लाह अपने खूबसूरत अंदाज में, मेरे लिए और क्या, मैं तो यकीन करके मैं सुनने वालों की साफ में होता हूँ।
1: नहीं नहीं, मैं हमेशा आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऑन एयर करूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में शिरकत किया करें। हाँ, मैं जो ना इंतजार करता हूँ कि आप आएंगे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, और हमेशा मैं कहता हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं कोई आपको कोई बटर लगाऊँ, बटर वैसे भी महंगा है आजकल, वैसे भी वो कहना के हो महंगा, ठीक है ना, घी महंगा हो गया।
2: मैं सुनाता हूँ, लेकिन पता क्या, बटर से डर नहीं लगता, लेकिन जिसके साथ आप बटर लगाते हो छुरी से डर लगता है।
1: आज ले गया ठीक है, आप शेयरिंग करें, ठीक है आज ले गया, मैंने लिख लिया यहाँ पे, किताब में लिख लिया मैंने इसका जवाब। जी
2: मैं पंजाबी की एक गजल लेके आया हूँ।
1: जी
2: तो एक मजदूर की कहानी है, ठीक है
1: जी, मजदूर की कहानी जी,
2: तो जास तो मैं
1: जी अर्शद
2: आज सुना मजदूर की कहानी, बेबस से मजबूर की कहानी,
1: वाह वाह,
2: भुखण पाना बारू आया, वेड़े वेख के भुख दा
1: साया, क्या कहने,
2: खुदकुशी दा सोच रहा सी, मुंह अथरू नाल पूछ
1: रहा सी, वाह वाह क्या कहने,
2: पग अपनी दा फा बना के डिगन लगा गल विच पाके,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: 8 साल दी धी नमाणी, ऐसे उम्रे बनी सियाणी,
1: वाह क्या कहने,
2: रो रो के तरले पांदी पई सी, हाथ जोड़ के आंदी पई,
1: वाह जी वाह क्या कहने,
2: अब्बा मैं नी बस्ता मंगदी, ना महंगा ना सस्ता मंगदी,
1: वाह वाह वाह वाह क्या,
2: ना मंगदी कलम दवाता, ना नुकदी ना होर सुगाता,
1: हाय हाय हाय,
2: अब्बा मैं नी गुड्डी लेंदी, बोती जानी पानी पैंदी,
1: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
2: वीर की करने कुगु कोड़े, खंग लांदे ने नान पकोड़े,
1: हाय हाय,
2: लच्छा गट्टा ते कबाब, मैदा अब्बा किरन खराब,
1: वाह वाह वाह,
2: मैं वल कर ध्यान वे अब्बा, अकल मेरी नू जान वे अब्बा,
1: वाह जी वाह क्या कहने
2: अब्बा, वेख मैं मेहनत कीती, जोड़ पटोले चुन्नी सीती,
1: वाह जी वाह,
2: मैं ते वीर ने गल्ले तोड़े, 110 रुपये जोड़े,
1: हाय हाय हाय क्या कहने,
2: एले फड़ते जा बाजारे, काम करांगे रल के सारे, गुब्बारे लेके छेती या आके मेरे हाथ फड़ा,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
2: अब्बा रल के सावा भर लवांगे, वेच गुजारा कर लवांगे, सानू छड़ के जाना अब्बा, जींदियां कब्रे पाना अब्बा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: अब्बा गल चुफा नूला, आके मैनू सीने ला,
1: हाय हाय क्या कहने,
2: उलियां बावा निकियां जिया, अथरू डोल डोल पैरी पईयां,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: प्यू ए सुन के रोवन लगा, हंजू हार परोवन लगा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: जिदे अथरू पूंज रहा सी, जिस तरह मोती हूंज रहा सी,
1: वाह वाह वाह क्या कहने,
2: प्यू बच्चा पर तीदे चा, लै बैठे सन डाडा फा,
1: वाह,
2: पैब गल मुका के रोया, बचपन कबरे पाके रोया, बचपन कबरे पाके
1: रोया, हाय हाय
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बड़ी मेहरबानी सर, और आपकी हमारी माँ जी ने रिक्वेस्ट की है कि ये आपने दोबारा पढ़ेंगे, और जो संडे का प्रोग्राम हुआ शाम के वक्त इंशाल्लाह जल उसमें आप दोबारा करेंगे, और उन्होंने बड़ा ही इंजॉय किया, आए हाय क्या कहने, ओए हाय उनके उत्तरों आ गए, और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई चौधरी रुखसार भाई, और मैं कोई कॉल नहीं लूँगा क्योंकि अभी जो न्यूज़ ब्रेक आने वाली है, हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते ऑन डेफिनेटली संडे इवनिंग इंशाल्लाह जल्द। और थैंक यू वेरी मच सब दोस्तों का, मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आप सबका भी, और आज हमने मिस किया है हमारे मोहतरम अब्दुल कयूम साहब को मिस कर रहे हैं, और महबूब लाइफ साहब को मिस किया आज, और अलहमदिल्ला, और राय अदर फ्रेंड्स आपको भी मिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमारे महबूबुल्लाह साहब आपको भी हमने डेफिनेटली मिस किया, ठीक है ना, अब्दुल कयूम साहब, मुदस्सर कियानी साहब आपको भी मिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जिन दोस्तों की लाइन ड्रॉप हो चुकी है आई डू अपोलोजाइज, जो मुझे विद हेल्प नंबर काफ़ी आ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अच्छा लगे आपने भी हमें याद किया, और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा शबरेज भाई आपने बड़ी तारीफ कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, रुखसार भाई की तारीफ की और सब खुलने वालों की तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ आन शब खैर यहाँ पे
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
4: Sky News Centre at 11. Sir Keir Starmer's spent the evening meeting ministers ahead of an expected challenge to his leadership tomorrow, where streeting supporters say he'll launch a bid to oust the Prime Minister. It's been a bizarre day with the turmoil overshadowing the state opening of Parliament, while Jonathan Brash became the first Labour MP to call for Sir Keir Starmer to step down on the floor of the Commons.
5: People are desperate for hope. And for however difficult it may be for many on these benches to admit, it is now clear to me that this Prime Minister can no longer provide that hope.
4: Six people from the UK who were on the cruise at the centre of a hantavirus outbreak have been discharged from hospital quarantine. They'll now be self-isolating at home. Nigel Farage is facing a sleaze watchdog investigation over a £5 million gift from a crypto billionaire. The Reform leaders insisting the case wasn't a political donation, so didn't need to be declared. The bodies of three women have been pulled from the sea near Brighton Pier. Police say they're studying CCTV as they try to work out what happened in the early hours of this morning. Now to sport, and Hearts know they will win the Scottish title for the first time since 1960 if they avoid defeat against Celtic on Saturday. They ease to a comfortable 3-0 win over Falkirk at Tynecastle. Midfielder Blair Spittle says it was important they kept themselves top of the table.
6: Yeah, I think that's kind of been the mindset throughout. Just make sure we do our job and expect Celtic to win. So, you know, we've managed to do our job tonight. It's still in our hands. We know what we need to do on Saturday. So, the important thing is recovery now and make sure we're ready for what will be a huge game on Saturday.
4: Celtic scored a controversial late penalty as they beat Motherwell 3-2 to keep their title hopes alive. They must win on Saturday to lift the trophy. And Manchester City boosted their Premier League title hopes. That was with a comfortable 3-0 victory against Crystal Palace. City are just 2 points behind the leaders Arsenal with 2 games left to play. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.

सूर में शान पंजाब दी है, एनू देन पंजा दरियावां दे आप दी है। महक जांदी नी जिवें गुलाब विचों, यानी अणख नहीं इवें पंजाब विच।

0: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था।
1: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था। I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े बड़े।
2: कयामत कयामत कयामत।